इट हैपेंस पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर, और इट हैपेंस के साथ आपसे कर रहे हैं कुछ जिंदगी की, कुछ आज के दिन की और कुछ बेहतरीन बातों की गुफ्तगू। और ये जो साथ है हमारा, ये आगे भी जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी बात अभी कर ली जाए। जी हाँ, तो बात कर ली जाए रिश्तों पर। पर रिश्तों में वैल्यू टाइमिंग से नहीं आती है, बल्कि कंसिस्टेंसी से आती है। जो इंसान हर बार मौजूद रहता है, वही भरोसा पैदा करता है, और भरोसा ही किसी भी रिश्ते की असली कीमत होती है। अगर एक रिश्ते में भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और अगर एक रिश्ते में भरोसा है तो सब कुछ है। मैं कहती हूँ, अगर प्यार भी ना हो ना, अगर आपको भरोसा है एक बंदे पर तो प्यार तो हो ही जाना है। लेकिन अगर प्यार का दावा करते घूम रहे हैं और भरोसा रत्ती भर नहीं है, तो बॉस प्यार वो है ही नहीं, है ना। तो टाइमिंग एक दूसरे को देने से ज़्यादा आज के वक्त में कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट जो है वो आपका एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा है। तो लॉयल रहिए और उस साथी को चुनिए जिसके लिए आप लॉयल रह सकें। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर।

जिंदगी के साथ को कुछ बेहतर और शानदार बना रहे हैं आप मेरे साथ मिलके। जी हाँ, जिंदगी के ये लम्हे जो हैं, इनकी खूबसूरती आगे भी बयां होती रहेगी। मुझे सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए ठापन्स रेडियो ब्रिस्वानी पर। वैसे क्या एक्सरसाइज में चुना आपने? जी हाँ, क्या चुना? कह रही हूँ रोज वही करते हैं। अरे तभी तो आप बोर होते हैं। एक्सरसाइज, एक ही स्टेप आप अगर रोज करेंगे तो यार बोर तो हो जाएंगे ना। देखिए, लाइफ चेंज मांगती है। अब अगर आपको एक ही तरह का खाना रोज मिले तो खा खा के बोर होंगे कि नहीं होंगे? फिर मन ही नहीं करेगा कि खाएं, फिर आप होटल भागेंगे। इसीलिए आप जिम भागते हैं। लेकिन अगर आप घर पर ही डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करें या फिर डिफरेंट पैटर्न ट्राई करें अपने वेट को लूज करने के या फिट रहने के, तो फिर मुझे लगता है एक पैटर्न का जो मौका है वो एक हफ्ते बाद आएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें बना रहेगा, है ना। तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं आज फिटनेस के लिए। आप कोई एक एक यूज करते रहिए और अपने दिन को परफेक्ट बनाने के साथ अपनी मॉर्निंग को भी परफेक्ट बनाइए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी 1701।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

बात की जाए ठाकुर में फिलहाल अभी आगे बढ़ने से पहले जरा ओवर थिंकर से, जी आप ही से दिन रात सोचते रहते हैं ना, अरे यार यू नो ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी हथियार के हंसते खेलते इंसान का कत्ल कर देती है। हम सोचते हैं कि हम एनालाइज कर रहे हैं पर दरअसल हम पैरालाइज हो रहे होते हैं। हम उन बातों का मतलब निकालते हैं जिनका कोई मतलब था ही नहीं। हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिन्हें कभी पूछा ही नहीं गया है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आर्ट है प्रॉब्लम को क्रिएट करने की जिसमें आप प्रेजेंट ही नहीं होते। ये एक ऐसा लूप है जिसमें अगर आप एक बार फंसते हैं तो आप फंसते चले जाते हैं, और इसीलिए इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमेशा सोचते हैं ना कि व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो, अगर मैं उस दिन वो ना कहता तो, अगर मैं कभी सेटल ही ना हो पाई तो। बहुत सारे ऐसे बेकार की चीजें, बेकार की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। मतलब हम क्यों अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं जबकि हमारी अगली सांस का भरोसा नहीं है, वो भी सोच सोच के। अरे यार आज का सोचिए, सिर्फ आज का, कल का भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगले पल का भी जरूरत नहीं है। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और ओवरथिंकिंग से प्लीज दूर रहिए, वरना आप इस ओवरथिंकिंग में फंसते चले जाएंगे। एक और ट्रैक सदाक्षी के साथ, और सुनते रहिए मेरे साथ रेडियो प्रस्थानी पर इट हैपेंस।

अच्छा एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्फानी 1701 AM पर। यू नो अभी हम दोस्तों उस फेज में हैं जिंदगी के जहां हम चाहे जो भी कर रहे हों लेकिन हमारा एक ब्रेन का जो हिस्सा है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसके माइंड में, उस ब्रेन के माइंड में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन किसी को जरूर चल रहा होगा कि खाना क्या बनाएं, या आज मुझे वहां के लिए निकलना है, आज मुझे ये करना है, कुछ ना कुछ। मतलब आप गौर कीजिए, आपके माइंड में कोई ना कोई बात जरूर चल रही होगी। तो एक्चुअली हम जहां पर प्रेजेंट जिस वक्त हैं उस वक्त वहां पर हम आधे से भी कम प्रेजेंट होते हैं, आधे से भी कम। और हमारा जो बाकी का परसेंटेज है ना, वो सारा का सारा उस बात पे फोकस करता है जो हमारे माइंड में पीछे चल रही है। आप खुद देख लीजिए आप कहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या सोच रहे हैं। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए ठापेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्फानी 1701 AM पर।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तक।
1: मॉर्निंग पर सताक्षी का साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, और इस साथ पर आपसे कुछ गहरी गुफ्तगू सताक्षी कर रही है। मैच्योरिटी क्या है, अक्सर ये सवाल जहन में आता है। बहुत सारे लोगों को हम कह भी देते हैं कि या तुम मैच्योर नहीं हो या तुम तो उम्र से पहले मैच्योर हो। तो देखिए, मैच्योरिटी वो है जहां आपको अगर कोई हर्ट करता है तो आप उस बंदे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि आप उसे हर्ट करने पहुंच जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी ये करूंगा, इसने मुझे कुछ कहा मैं भी कहूंगा, बट ये आपकी इमैच्योरिटी शो करती है। कहते हैं कि जिसके पास जो है वो वही आपको देगा। अगर किसी के पास पेन है, दर्द है, तो वो वही आपको दे रहा है, इसलिए उसको बस आप ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी कि भैया जहां रहो खुश रहो। हाँ ठीक है, अब तुमने आज कह लिया, हम तुम्हें दोबारा खुद से ये कहने का मौका नहीं देंगे, तो हम तुमसे दूर हो रहे हैं बस, और आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये कहना कि भाई हम भी वही करेंगे, ये तो फिर आपके अंदर भी वही चीजें भर गई है ना, तो ख्याल रखिए। आइए फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज ठप्पन्स पर सताक्षी का एक बढ़िया सा साथ आपके लिए, जिसे मैंने सजाया और संवारा आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ कि इन पलों के साथ ये खूबसूरती जो है ये बहुत खूबसूरत हो गई होगी। तो बस दिन की खूबसूरती ऐसे ही बनी रहे, ये विश है मेरी, और इसी विश के साथ अब ये वक्त है आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। तो मिला जाए कल, जी हाँ, कल फिर से होगी मुलाकात ठप्पन्स में। आज के सफर से अब विदा दीजिए और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026 शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स शॉपिंग राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज और हाँ शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स तरुण रनीगा रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स एंड वेट रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले सबसे बेस्ट पार्ट एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए सैटरडे जून 13 ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर डोंट मिस इट
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
3: ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਕੈਰੀ ਵੇਟ ਬਿਯੋਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ Q11700 ਦ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਪਲੇਟ ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ 1922 ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਵੈਨੈਂਸ ਓਨਡ ਆਊਟਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੈਡੀ ਫਾਰ ਦ ਬਾਇਰ ਹੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਦੈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਯੂ ਕੈਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ Who you are? Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
2: Fire
3: a number; ants. It's a statement.
2: ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन

वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तो बने हुए हो जी, थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी अच्छे संदेश वालक दे नाल सी जुड़ चुके हो, वन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हैगा जिहड़ा उह शुरू हो चुक्या दी, ते असीं इस वेले दे दौरान ढेर सारे गीत सुनने, गल्लां वी करनियां ने, ते नालों नाल तुहानूं जानकारी वी दिंदे रहना कि कुछ दुनिया भर दे विच चल रिहा हैगा। हर चीज मिलेगी तुहानूं जानण दे लई। तुसीं बस की करना, तुसीं बस जुड़ना है, अपने फोन का इस्तेमाल करना है जो तुसीं अक्सर करने रहते हो। रेडियो बसवाणी 101.1 साडा फेसबुक पेज है, जिथे बसवाणी और बसवाणी .com साडी ईमेल आई टी है। जरिए जिहड़ा अपनाना चाहुंदे हो अपनाओ, साडा गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल तुसीं जुड़ो, अपनियां फरमाइशां भेजो, दिल दीआं गल्लां करो। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समां इहनां सोहणे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी आनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टर ते फिल्म मेकर फरहान अख्तर है ने जेड़े अजकल काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ने। फरहान अख्तर दी डॉन 3 काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ते डॉन 3 तो अचानक बाहर होण तो बाद ना रणवीर सिंह होर ज्यादा सुर्खियां दे विच आ गए क्योंकि वो हमेशा ही सुर्खियां च रहिंदे ने, पर उहनां दीआं इस वार सुर्खियां मुश्किलां करके आ क्योंकि मुश्किलां वधदीआं दिख रहीआं ने। हाल ही विच फैडरेशन ऑफ वैस्टर्न इंडिया सिने इंप्लॉयर्स ने उहनां दे खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन डायरेक्टिव जारी किया है, मतलब के फेडरेशन दे डायरेक्टर्स कैमरामैन अते क्रू मैंबर्स हुण रणवीर सिंह दे नाल काम नहीं करनगे। इस वड्डे विवाद विचकार ना हुण उहनां दीआं ओह फिल्मां दी चर्चा तेज हो गई है जिन्हां नूं रणवीर सिंह ने रिजेक्ट कर दिता है। उहनां बारे दस्सदी आं एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

0: from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers
0: for 10
1: for change
0: cents
1: today.
0: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.

0: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आर्चे संदेश वाले दिन आज से बने हुए। अगला नाम है जी विकी कौशल दी, बहुत ही ज्यादा सोहनी जी शानदार जी फिल्म ते ओ फिल्म है गया जी सैम बहादुर। सैम बहादुर काफी ज्यादा पसंद की गई है ना, तो सैम बहादुर दे लई भी मेकर्स दी पहली पसंद विकी कौशल नहीं सी, ओ सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह नु ए ऑफर हुई सी पहला फिल्म, पर उस वेले रणवीर अपनी फिल्म त्रासी विच कपिल देव दे किरदार निभा चुके सी, तुरंत बाद एक होर बायोपिक करना नहीं चाहते सी, नाल ही डेट सी समस्यावां दे चलदे उन्होंने फिल्म छड्ड दी थी, जिस तों बाद विकी कौशल ने सैम बहादुर दे नाल एक बार फिर जिहड़ी अपनी एक्टिंग हैगी है वह दर्शकों के सामने रखी, तो दर्शकों वालों भरपूर प्यार भी मिलिया।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण जिहड़ी फिल्म मैं दसन जा रही हां जिसनूं रणवीर सिंह ने रिजैक्ट कीता हैगा वह तुसीं मतलब कहोगे कि शायद ठीक है रिजैक्ट करके क्योंकि वो फिल्म जिहड़े एक्टर ने कीती ना उस तो बहुत सूट कीती सी। नाम है जी कबीर सिंह। शाहिद कपूर दे करियर दी सब तो वड्डी हिट कबीर सिंह भी पहला रणवीर सिंह दी झोली विच डिगण वाली सी। डायरेक्टर संदीप रेडीवांगा इस दे लीड रोल दे लई रणवीर दे कोल गए सी पर उस समय रणवीर नूं इस किरदार दा पागलपन गुस्सा ते फिल्म दा डाकू माहौल थोड़ा ज्यादा लग्या। उन्हां नूं लग्या कि उन्हां दी इमेज ते भारी पै सकता है इसलिए उन्होंने मना कर दिता ते ए फिल्म चली गई जी शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर ते क्यारा अडवाणी की जोड़ी इस फिल्म के नाल इन्नी हिट हुई ना कि हर कोई इन्हां नूं हुण बहुत ज्यादा प्यार करता है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbani.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट. आज का

ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਬਸਵਾਨੀ 107.1 FM ਤੇ ਜੀ ਆਰਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। अगला जेड़ा नाम हैगा है, वो है जी हनुमान। हनुमान फिल्म जदों आई सी ना हर पासे इसे दी चर्चा हो रही सी, नाम नू लैके भी ते फिल्म नू लैके भी। देखो हनुमान ना फेमस डायरेक्टर प्रशांत वर्मा दे निर्देशन विच बनन वाली माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म राक्षस दे लई रणवीर सिंह दा नाम बिल्कुल फाइनल हो चुकिया सीगा। ते हर कोई हनुमान फिल्म नहीं राक्षस फिल्म हर कोई ना इस प्रोजेक्ट नू लेके बेहद एक्साइटेड सी, पर शूटिंग शुरू होने तो ठीक पहला दोवां दे विचकार क्रिएटिव मतभेद हो गए। गल इनी वध गई कि रणवीर सिंह अते मेकर्स अपनी सहमति नाल एक दूसरे तो उन्होंने रस्ते हैगे जिहड़े वक्-वक् कर ले सी, ते प्रोजेक्ट वड्डा प्रोजेक्ट फिलहाल ठंडे वस्ते विच है। हनुमान हो गई सी रिलीज उस डायरेक्टर दी अगली फिल्म राक्षस जिहड़ी हले बनी ही नहीं।

0: फिल्म पर जो सिनेमे के अंदर गए हैं आप चढ़ती कला च गए हैं जो बाहर आए तो चढ़ती कला च आए हैं।
1: कई फिल्मा ना बी जी दहाकिया च बन दया ने फिल्म यह आ चढ़ती कला
2: अज मथे च मार के वे सानू भी पता लग जू तेरे च किन्नी हिम्मत आ।
3: सिखी नू इंस्पायर करती है अपने कौम दे नाल जोड़दी अपनी हिस्ट्री बारे दसदी आ।
4: किरदार निभा रहे ना बहुत उच्चे ते सुच्चे किरदार सीगे।
5: अखां दियां धोलो बड़ा गुनाह होगा जे मूवी मिस कर।
3: कोई ऐसा मूवमेंट नहीं जिथे रोना ना आवे।
4: एक साल दा जिहड़ा आ ओह वक्फा नहीं आ। उस सालां दे वक्फे नू उन्हां ने समेट के ना स्क्रीन टाइम दे विच फिट कर दित्ता गया।
5: बहुत सोहणी मूवी होनी आ हर पंजाबी नू देखनी चाहीदी आ।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: Are
3: a
4: you
3: number,
4: ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
7: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
11: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपनी चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जीआरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हो। देखो साउथ दे दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर अपनी कल्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म अनिने द हिंदी रीमेक रणवीर सिंह दे नाल बनाउण दी प्लानिंग कर रहे सी। अनिने बहुत ही सोहनी फिल्म हैगी है, तुसी गूगल करके देख लो। रणवीर खुद भी इस दमदार रोल नू लैके बेहद एक्साइटेड सी। फिल्म दियां तैयारियां शुरू हो चुकियां सी पर तद फिल्म नू लैके कानूनी पड़च्चे शुरू हो गए जिस वजह दे नाल अगे वधी नहीं पाई ते आखिरकार मेकर्स नू ए वड्डा प्रोजेक्ट बंद ही करना पिया। अपरिचित याद है ना थोनू? याद कर लो दोबारा, याद आ जानी बहुत ही ज्यादा शानदार फिल्म है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: Next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
8: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
8: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हां जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म हैगी है जी भी बहुत खास हैगी है बहुत ही ज्यादा सोहनी हैगी है। उस दे विच भी लगता है कि शायद जिस एक्टर ने की उस बिल्कुल सूट कर रहे हैं। फरहान अख्तर की ही गल कर रही है तो फरहान अख्तर की सुपर हिट फिल्म भाग मिल्खा भाल की गल हो रही है। थी भाग मिल्खा भाग दे लई भी रणवीर सिंह मेकर्स की पहली पसंद सी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा दी स्ट्रेंजर इन द मिरर विच खुलासा किया है कि रणवीर ने इस रोल दे लिए ऑडिशन दिता सी अते उन्होंने कहानी बेहद पसंद आई सी पर बाद विच ना कुछ कारण करके उन्होंने इस कल्ट फिल्म तो मना कर दिता गया। बाद विच फरहान अख्तर ने ए रोल निभाया सीगा ते उन्होंने मना किया फरहान दी झोली च फिल्म गई हैगी ते फरहान अख्तर ने इस किरदार दे नाल पूरी ईमानदारी कीती।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

जी वेला तो हो चुका है तुहाडे तों इजाजत लैण दा, पर इजाजत नहीं लैणी क्योंकि एक होर आउण वाली फिल्म हैगी है जिहड़ी उस दे बारे विच गल करनी हैगी। उह बहुत खास फिल्म है, संजय लीला भंसाली दी फिल्म है ते फिल्म दा नाम है जी लव एंड वॉर। लव एंड वॉर दे लई पहला रणवीर सिंह दे नाल गल हुई सी, पर जद उहनां नूं पता चलिया कि इह रोल फिल्म दा मेन लीड नहीं है तां उहनां ने इस ऑफर नूं ठुकरा दिता। बाद विच इह रोल विकी कौशल दी झोली विच जा गया ते हुण विकी कौशल रणबीर कपूर ते आलिया भट्ट दे नाल इस ड्रामा फिल्म दी स्क्रीन शेयर करनगे। तिन्ना नूं लैके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हैगी है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला इन्हां दी फिल्म दे विच। बाकी तुहानूं की लगता है कि रणवीर सिंह ने इन्हां फिल्मां नूं ना कह के उन्हां दा डिसीजन सही सी या नहीं, क्योंकि जिन्हां ने किरदार निभाए हैगे ने बहुत बाखूबी निभाए हैगे। बाकी तुसीं अपनी राय जरूर दसदे रहा करो। रेडियो बिसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिसवानी @bisawani.com साडी ईमेल आईडी है जरिया, जेड़ा भी तुसीं अपनाउणा चाहुंदे हो अपनाओ, साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहा करो। तां मैं इही कहणा है जी कि कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन। हर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में QBOG 2026।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतल तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू ब्रिस्बानी.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो। और आपको बताया, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जी हाँ, वीकेंड पे मैंने आपको इतना मिस कर लिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब हम इवनिंग वाइब में फिर से मिलेंगे, कब हम जबरदस्त से गाने प्ले करेंगे और कब मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैंने देखी सुनी। आपको तो पता ही है कि मुझे चीजें शेयर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और वही मैं करने वाली हूँ। लेकिन और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ शुरुआत होगी। एंड गेस व्हाट, वो क्या है। वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक अच्छा सा हेल्दी रिचुअल जो कि है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से रिलेटेड। और जब हम वो करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जी हाँ हमेशा कहती हूँ, कि जब भी आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, आप कितने भी केओस से आए हो, आप अगर ये करोगे ना, सच में आप सब कुछ भूल जाओगे। एकदम शांति से, काम माइंड से और फोकस के साथ आप आगे बढ़ोगे, शांत मन से आप आगे बढ़ोगे। तो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब देर किस बात की, आप लोग बोलोगे देर किस बात की। वेल ऑफ कोर्स अच्छे गानों के साथ शुरुआत होनी चाहिए। और ये जो गाना है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजेदार भी है और आपको बहुत ही वाइब जो है वो अच्छे से करवाने वाला है। और हमारा तो काम ही आपको वाइब करवाना है, क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है। जो आइए सबसे पहले करते हैं शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

इतने ज्यादा क्लासी होते हैं ना, इतने ज्यादा क्लासी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये गाना उनमें से एक है और ये इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ अब चलते हैं सीधा अपने मौसम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर माशुका के साथ मौसम पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माशुका एंड मौसम दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो पहले थोड़ा जान लीजिए, तभी आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे और तभी आप अच्छे से मना पाएंगे, फिर चाहे वो माशुका हो या मौसम हो। जी हाँ, यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है और अभी की अगर बात की जाए तो 21.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 18.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं अगर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में आप गिरावट देख पाएंगे और चांसेस ऑफ रेन निल इल्ले। जी हाँ, इल्ले मतलब बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर एकदम मजेदार सा ये सनी सनी सा दिन, लेकिन ठंडक जो है वो बढ़ गई है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ठंडक जो है वो बढ़ गई है और इसके लिए मैंने आपको पहले से ही प्रिपेयर होने के लिए कह दिया था। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और अब जरा चलते हैं ट्यूजडे यानी कि कल की तरफ, तो मोस्टली सनी रहेगा अगेन कल भी और 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। वेडनेसडे को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा एंड अगेन सनी रहेगा। सो मौसम मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, बल्कि सैटरडे तक मुझे बहुत ही मजेदार मौसम यहाँ पर नजर आ रहा है। सनी रहेगा ऑलमोस्ट हर दिन और टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा। हाँ, ठंडक जो है वो रातों में बढ़ गई है, सो उसके लिए आपको रेडी रहना, क्योंकि रातें और सुबह काफी ठंडी होने वाली है। लेकिन उसके अलावा बाकी मुझे दिन में टेम्परेचर जो है वो प्यारा प्यारा सा नजर आ रहा है। मतलब यू नो, बाहर जो धूप होती है वो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, वो वाला मौसम। जी हाँ, यहाँ पर ये है मौसम का हाल। और अब जरा चलते हैं सीधा एक बहुत ही जबरदस्त गाने की तरफ और उसका नाम है आबाद।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 107.5 और उसी के साथ दोस्तों अब आ गया है वही वक्त जिसका आपको भी इंतजार रहता है क्योंकि इसके बाद जो प्रोग्राम खास बनता है उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट योर फरमाइश, योर फरमाइशी गीत, वो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स जो आपकी प्लेलिस्ट कराते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में शामिल हो जाते हैं। आप फरमाइश करते हो लेकिन चार चांद हमारे आपकी फरमाइशें सर आंखों पर और जल्दी से भेज दीजिए अपनी फरमाइशें, अपने वो चुनिंदा अजीज गाने जो आपको बहुत ही पसंद है और उसके थ्रू अपने हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। आपको करना क्या है? आपको करना है नंबर डायल और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट +9182888717001। बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की गठड़ी में, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं जो कमाल पिछले दिन हुआ है, क्योंकि पिछले कल था एक बहुत ही जबरदस्त फाइनल क्रिकेट मैच का फाइनल अबाउट IPL इंडियन प्रीमियर लीग, गुजरात टाइटन वर्सेस RCB। नाउ RCB वही टीम है जिसके साथ पूरे भारतीयों की जो है वो फीलिंग्स जुड़ी हुई है। आई डोंट नो, शायद इसलिए क्योंकि विराट कोहली इसमें है और किंग कोहली को लोग पूजते हैं लिटरली। मतलब मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगी इस चीज को कि किसी को आप इतना कैसे पसंद कर सकते हो कि उसको आइडलाइज करना शुरू कर दो। सो यार, वैसा वाला फैंडम जो है वो मेरी समझ के तो परे है, बट या इट इज व्हाट इट इज। किंग कोहली अपना बैट उठाते हैं और चाहे छक्का लगे चाहे ना लगे, चौका लगे चाहे ना लगे, रन लगे चाहे ना लगे, लोग उनके फैन हो जाते हैं। अगर वो अपनी आईब्रो उठाते हैं, लोग उनके फैन हो जाते हैं। वो एक स्नैक खाते हैं तो लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि वो खा क्या रहे हैं, चाहे फिर वो प्याज भुजिया ही खा रहे हो। जी हाँ, अब ये भी वायरल हो रहा था इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे विराट कोहली जो है वो कुछ मंच कर रहे थे, लोगों को लगा पता नहीं क्या ही खतरनाक सी चीज वो कर रहे हैं। जब ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि वो फ्राइड अनियन है, जी हाँ, अनियन भुजिया है जिसको वो मंच कर रहे हैं। लोगों को लगा कि ओह माय गॉड, किंग कोहली कुछ खा रहे हैं तो क्या ही खा रहे होंगे। सो या, किंग कोहली के लिए बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि पिछले साल जब उन्होंने IPL पहली बार जीता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट किंग कोहली बट विराट कोहली के साथ साथ उनकी पूरी टीम, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जी हाँ, उन्होंने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग को जीता था। सब लोग उनके लिए खुश थे, everyone literally, और इस साल फिर से उन्होंने कमाल कर दिया। बैक टू बैक दो ट्रॉफीज, वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे लेकिन फिर से ट्रॉफी ले गए। जी हां, सो विराट कोहली के साथ साथ उनकी टीम के बाकी सारे मेंबर्स भी बहुत खुश हैं, और RCB को सपोर्ट करने वाले लोग तो लिटरली फूले नहीं समा रहे। मतलब वो तो इतने ज्यादा खुश हैं कि आप अगर उनको बोलोगे कि एक किडनी दे दो भाई, तो वो खुशी खुशी में किडनी भी दे देंगे। जी हाँ, सो या, ऐसा ही कुछ चल रहा है, और बहुत ही जबरदस्त मैच रहा। गुजरात टाइटन्स ने बहुत अच्छे से मुकाबला नहीं किया, मैं ये कहूंगी, क्योंकि 150 का ही स्कोर था, और 150 के ही स्कोर का जो है वो उनको क्रॉस करना था, उनको पार करना था और उनको चेज करना था RCB वालों को। बट या, मजेदार था मैच और RCB जीत गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू RCB। और अगर आप भी IPL देखते हो और देखते आए हो, और अगर आप लोगों को भी IPL में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और अगर आप भी RCB और किंग कोहली के फैन हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, बिकॉज आपकी किंग कोहली, या फिर मैं कहूँ आपकी पूरी टीम जीत चुकी है। यहाँ पर अब जरा चलते हैं, एक और खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि ये सीजन मेटियोर्स का है. मतलब मेटियोर्स दिख रहे हैं और वो ऐसे दिख रहे हैं कि लोग उनको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते. मतलब कुछ लोग लिटरली स्पेशली जाते हैं मेटियोर शार को देखने, खूबसूरत मेटियोर्स की उस खूबसूरत ट्रेल को देखने जो कि एकदम ब्राइट स्टार्स के गिरने जैसी दिखती. लेकिन यहाँ पर लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि मेटियोर्स कह रहे हैं कि हम गिरेंगे नहीं, हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से गिरेंगे. सी हाँ, तो यहाँ पर एक ब्राइट मेटियोर फायरबॉल जो है वो देखा गया ओवर द पार्ट्स ऑफ न्यू इंग्लैंड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, सैटरडे को. और सैटरडे की दोपहर को ये देखा गया और यहाँ पर इसको सिर्फ देखा नहीं गया, इट वॉज फॉलोड बाय अ लाउड बूम आफ्टर द स्पेस रॉक ब्रोक आफ्टर अ पार्ट हाई इन द एटमोसफेयर. जी हाँ, सो ना सिर्फ वो खूबसूरत ट्रेल दिखी, वो खूबसूरत नजारा दिखा, बल्कि उसकी आवाज जो है वो भी काफी ज्यादा बड़ी जो है, काफी ज्यादा जोर से जो है वो सुनाई दी. और ये नासा ने कहा है जी, और किसी ने नहीं कहा है. लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस इवेंट को जो है वो बहुत सारे लोगों ने देखा, नॉर्मल लोगों ने भी देखा और साथ में नोवाज जो कि NOAA जो कि गोज 19 सैटेलाइट्स है, उन्होंने भी इसे रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू नासा. सो नॉर्मल लोगों ने देखा, आम लोगों ने तो देखा ही, लेकिन नासा की जो सैटेलाइट है 19 सैटेलाइट उसने भी इसको देखा, जिसका नाम है NOAA। यहाँ पर ये मेट्योर जो है वो लिटरली हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इतना ज्यादा जो है ये जबरदस्त तरीके से गिरा कि इसकी आवाज जो है वो लोग नजरअंदाज ही नहीं कर पाए। मतलब नजरअंदाज करना तो मुश्किल है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई बॉम्ब तो नहीं गिरा दिया, किसी ने कोई धमाका तो नहीं कर दिया। जी हाँ, मेट्योर्स बोल रहे हैं कि ये लोग तो वैसे ही लड़ लड़ के मरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो हम भी क्यों आराम से जाए, हम भी क्यों खूबसूरत तरीके से जाए, हम भी एकदम आवाज करके जाएंगे। और ये मेट्योर वहां पर देखा गया। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि नासा ने कहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है उस मेट्योर के ब्रेकअप से, मतलब वो जब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो इक्वल टू थी अराउंड 300 टन्स ऑफ TNT, विच एक्सप्लेन्स द लाउड साउंड हर्ड अक्रॉस द रीजन। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेट्योर जब इतनी ज्यादा जोर से गिरा था कि ज्यादा आवाज, यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने लग गया है, क्योंकि यहाँ पर आवाज जो होती है एक ट्रेल जो है, एक फायरवॉल की तरह ट्रेल जो है व्हाइट लाइट की वो नजर आई, और उसके बाद लोगों को समझ आ गया कि यहाँ गवर्नमेंट ने किया, ये अर्थ के महान लोगों ने नहीं किया, ये स्पेस से हुआ है। सो अच्छा ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो रॉबर्ट अपना खतरनाक सा जादू नहीं चला पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं गलत साबित होती हुई नजर आ रही हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। तो मॉडल्स जो है उनको लग रहा था कि एआई और रॉबर्ट्स किसी की भी नौकरी खाएंगे, हमारी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो सेफ हैं क्योंकि हम मजेदार से खूबसूरत से कपड़े पहनकर रनवे पे उतरेंगे और लोगों को वही पसंद आएगा। लेकिन सोल में कुछ ऐसा हुआ, एंड इफ यू डोंट नो वेयर सोल इज, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया की कैपिटल। सोल में कुछ ऐसा हुआ जहां पर लोगों और खासकर मॉडल्स की ये विचारधारा चेंज हो गई है। सो रॉबोट्स और ह्यूमंस मॉडल्स ने एक साथ वॉक किया रनवे पे मैचिंग आउटफिट्स में सोल के एक फैशन शो में। जी हाँ, आपने सही सुना। सो साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन ने स्टेज किया है एक फिजिकल एआई फैशन शो। ये इसका एम था टू इमेजिन अ फ्यूचर वेयर ह्यूमंस एंड रोबोट्स को एग्जिस्ट। भाई, को एग्जिस्ट करने के लिए तुमने उसको रैंप पे भी उतार दिया, क्या मतलब है इस बात का? जी हाँ, सो रोबोट्स जो है उन्होंने पहना हुआ था केप्स और वो लिटरली मॉडल्स की तरह, मैं नहीं कहूंगी लेकिन मॉडल से कम भी, वो अच्छे से वॉक नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने लिटरली फीमेल मॉडल्स के साथ वॉक किया, मेल मॉडल्स के साथ वॉक किया और उन्होंने अपने केप भी रिमूव किए, जी हाँ, अपना आउटफिट दिखाने के लिए। जी हाँ, और ये सब जो है वो होता हुआ नजर आया एक ऐसे रनवे शो पर जहाँ पर किसी ने ये सोच लिया कि रोबोट्स और ह्यूमंस एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रह सकते हैं, वो खुशी खुशी वॉक कर सकते हैं, खुशी खुशी खाना खा सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, रॉबर्ट्स खाना नहीं खा सकते। वेल, आपको नहीं पता, थोड़े टाइम में क्या पता ऐसे रॉबर्ट्स बन जाए जिनको सच में हमारा पनीर टिक्का, चिकन बिरयानी ये सब पसंद आने लग गया। वो कहेंगे हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको तो चिकन टिक्का, पनीर बिरयानी और ये सब खाना है, हमको पराठे खाने, भाई हमको वड़ा फेफड़ा खाना है, हमको और कुछ नहीं खाना, ये बिजली तुम अपने आप को शौक लगाओ, हम तो ये सब खाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। आई मीन, यू नेवर नो। हमने रॉबर्ट्स की मूवीज जितनी भी देखी है उसमें हमें यही दिखाया गया कि कैसे रॉबर्ट्स जो है वो ह्यूमंस के इतना करीब पहुंच जाते हैं कि उनको ह्यूमंस से प्यार होना शुरू हो जाता है, वो ह्यूमंस की तरह एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हैं और ह्यूमंस की तरह खाना भी खाना शुरू कर देते हैं। सो यू नेवर नो। प्लस हमारा खाना इतना टेस्टी भी है कि रॉबोट्स अगर उसको खाने की कोशिश करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यहाँ पर सो ये रनवे फैशन शो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैचिंग आउटफिट्स, वो केप को उतार कर अपना आउटफिट दिखाना, ये सब किया है उन रॉबर्ट्स ने। जी हाँ, सो मॉडल्स, या मेरे प्यारे प्यारे मॉडल्स, अगर आपको लग रहा था कि आपकी इंडस्ट्री पे तो वो धावा नहीं बोल सकते, टर्न्स आउट यू आर रॉन्ग एंड आई वाज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि मुझे भी लग रहा था एटलीस्ट ये इंडस्ट्री तो सेफ है, बट अब रॉबर्ट्स फैशन शो में भी उतरने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, पूरी तरह से। सो क्या बनेगा आपका, आई डोंट नो, बट तैयार रहिए जो भी बनेगा। जी हाँ, सो

जगाती है कयामत कोई।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन। आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
13: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
15: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
13: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
15: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, और एग्जैक्टली मौसम के बारे में बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन मैं मौसम के बारे में फिर से बात क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी और जैसे आपको पता ही है विंटर्स जो है वो पूरी तरह से दस्तक दे रही है और दे चुकी है बेसिकली, और ठंडक जो है वो बढ़ रही है। तो कैसे मेरी बात चल रही थी थी और वहां पर सामने आई बात कि लगता है कि इस बार 0 degrees तक मौसम जो है वो जा सकता है, ठंड जो है वो जा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से ड्रॉप हो रहा है और आगे जाके और भी होने वाला है जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना भी जा सकता है। आप लोग बोलोगे कि हाँ शायद सच में ऐसा हो सकता है। नाउ इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ हम इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं बल्कि ये चीज हमारी ही की गई है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा नीवे शर्मा हमने क्या कर दिया। वेल इंसान अच्छी चीजें कम करते हैं लेकिन गड़बड़ चीजें ज्यादा करते हैं, लेकिन यहां पर उसका असर जो है पैसिफिक में नजर आ रहा है क्योंकि पैसिफिक में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, जब पैसिफिक में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको एल नीनो कहते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहा जाता है सुपर एल नीनो। जी हाँ, शायद आपने इसके बारे में सुन लिया होगा क्योंकि इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। सो इसमें होता क्या है, इसमें होता वही है कि जब टेम्परेचर पैसिफिक में बढ़ता है तो सुपर एल नीनो जो है वो होता है, और सुपर एल नीनो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 बार हुआ है। जी हाँ, हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 4 बार हुआ है और उस 4थी बारी में हम भी शामिल हो गए हैं। इमेजिन कीजिए, मतलब जब से हमने इस चीज को प्रिडिक्ट करना शुरू किया, मतलब अच्छे से स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 बार ये हुआ है और ये साल उसी में से एक है। नाउ सुपर एल नीनो में होता क्या है, इसमें होता है ठंड जहां बढ़ती है वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बड़े स्नो स्टॉर्म जो है वो नजर आते हैं, हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा चलती हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि इंडिया में ऐसे तूफान आए कि लिटरली लोग जो है उसमें मर गए। क्यों? क्योंकि ऐसे तूफान कभी देखे ही नहीं गए। सो ऐसे में अभी ऐसे तूफान क्यों आ रहे हैं? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एल नीनो। जहां पर गर्मी होती है वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो किसी ने पहले देखा भी ना हो। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सुपर एल नीनो। जी हाँ, जहां ठंड होती है वहां पर ज्यादा ठंड हो जाती है, और दैट इज द रीजन कि आप आजकल ठंड जो है वो फील कर पा रहे हैं। और ये तो अभी मई का एंड हुआ है, मतलब जून की स्टार्टिंग है। आपको बताइए, इसी के साथ जो है वो गर्मी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठंड जो है वो धीरे धीरे और भी बढ़ जाएगी। गर्मी जो है वो इंडिया में बढ़ रही है और ठंड जो है वो यहां पर बढ़ रही है। सो ऐसे में ये भी सुपर एल नीनो की वजह से है कि आपको ये वाले विंटर्स जो है वो ज्यादा हार्श नजर आ सकते हैं। जी हाँ, जहां बारिश हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आ रहे हैं, गर्मी हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और यहां पर हम भी अभी तक के जितने भी विंटर्स हमने देखे हैं उसमें कहीं ज्यादा हार्श विंटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ सुपर एल नीनो, जो कि है टेम्परेचर के बढ़ने से होता है, पैसिफिक में टेम्परेचर के बढ़ने से। या एंड इट इज व्हाट इट इज। सो ठंड के लिए तैयार रहिए, लेकिन थोड़ी ज्यादा ठंड के लिए तैयार रहिए जो कि शायद आपने देखी भी ना हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वैसी ठंड आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, क्योंकि खबरों की दुनिया की तरफ जाना भी जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच की खबर के साथ। अमेरिका ने युद्ध विराम के बीच ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर किया हमला। जी हाँ, सो वैसे तो ये चल रहा है सीज फायर, लेकिन यहाँ पर सीज फायर नहीं है, सीज नहीं है, बट फायर ही फायर मुझे दिख रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने शनिवार और रविवार को ईरान में रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हफ्ते के आखिर में ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड में ईरानी रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर आत्मरक्षा में हमला किया गया। इन हमलों को सेटकॉम ने जवाबी कार्रवाई करार दिया है। दरअसल इससे पहले ईरान ने यूएस MQ-1 ड्रोन को गिरा दिया था। ईरान ने दावा किया था कि यह ड्रोन उनके समुद्री क्षेत्र में था। इसके बाद यूएस लड़ाकू विमान तुरंत सक्रिय हुए और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दो ड्रोन को नष्ट कर दिया। अमेरिका ने इन्हें वहां से गुजर रहे जहाजों के लिए खतरा बताया था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ म्यांमार से बहुत बुरी खबर। म्यांमार भीषण धमाके में 55 लोगों की मौत हो गई है और अब तक क्या पता चला है। म्यांमार में रविवार को हुए एक भीषण धमाके में 55 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। ये उस इलाके में हुई है जो विद्रोहियों के कब्जे में है। शान राज्य में नामखाम टाउनशिप में हुए इस घटना के बारे में एक सूत्र ने बताया कि 25 महिलाएं और 30 पुरुष मारे गए। कुछ अन्य रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। इस इलाके पर नियंत्रण रखने वाले समूह और सेना के खिलाफ लड़ रहे ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने कहा कि खदान और पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक फट गए, इस कारण यह हादसा हुआ। TNLA के बयान में के मुताबिक ये अनजाने में हुआ धमाका रविवार को दोपहर 12 बजे हुआ। TNLA ने कहा कि इस धमाके की वजह से कई गांवों के लोगों की जान गई तो लोग घायल भी हुए हैं और उनके घरों को नुकसान भी पहुंचा है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शुरुआत में कई लोगों को लगा कि ये हवाई हमला है। उसने लिखा कि किस्मत से मेरे फोन ने मेरी जान बचा ली। मैं अपने कमरे में बैठकर नूडल्स खा रहा था और फोन देख रहा था। अगर मैं रसोई में होता तो शायद जिंदा ना रहता। उसने बताया कि उसके पैर में हल्की चोट आई और उसका घर भी तबाह हो गया। उसने लिखा, लोग रो रहे थे, अपने माँ बाप को पुकार रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक खबर जो कि फीफा वर्ल्ड कप से आई है, और अगेन यहाँ पर भी अमेरिका और ईरान का विवाद नजर आ रहा है। नाउ इफ यू नो अबाउट फीफा, यू नो कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही है, नॉट जस्ट अमेरिका बट मेक्सिको एंड कनाडा भी। सो 3 कंट्रीज में मिलकर ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो लिटरली बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, या फिर फीफा अथॉरिटीज जो है इसे सुर्खियों में बनाना चाहती हैं, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने जब से फीफा वर्ल्ड कप अनाउंस किया है, लोग जो है ज्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे। सो यहाँ पर ईरान की टीम जो है, जो कि जाने वाली थी इस फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने जाने से पहले, उनको ये पता चलता है कि अमेरिका ने मना कर दिया है कि उन्हें उस कंट्री में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर, अमेरिका और ईरान वॉर में हैं। तो अमेरिका ने मना कर दिया है कि वो ईरान को होस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेक्सिको ने बीच में एंट्री मार ली है। मेक्सिको ने कहा है कि डोंट वरी, हमें ईरान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन कम टू अस, और आप यहाँ पर आकर रह सकते हो, और आप यहाँ से आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, सो यहाँ पर ईरान जो है वो अभी फिलहाल के लिए मेक्सिको में जाकर रहने वाला है और फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाला है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, जो कि मेरी तरफ से नहीं है, एक फरमाइशी गीत है, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर की तरफ से, जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है अप्पा दोवे। जी हाँ, और ये हंसराज हंस का, लेजेंडरी सिंगर हंसराज हंस का गाया हुआ गाना है। थैंक यू सो मच इस जबरदस्ती फरमाइश के लिए। बिल्कुल देर ना करते हुए आपका ये गाना हम प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब एक बर्थडे विश करने का वक्त आ गया है और ये बर्थडे विश करने वाले हैं हम हमारे फेवरेट आर माधवन जी को। आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस पर्सन। मतलब इनकी एक्टिंग, इनकी पर्सनालिटी, और तो और मतलब इनका जो स्वैग है, जी हाँ, और जिस हिसाब से मतलब जो बहुत ही प्यारा सा मतलब इनोसेंस ये लेकर आते हैं ना, इनके चेहरे पर ही इनोसेंस है। मतलब इनके चेहरे पे ऐसी इनोसेंस है कि इनको मतलब इनोसेंट बिहेव करने की भी जरूरत नहीं है, एक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब रहना है मेरे दिल में से लेके तनु वेड्स मनु से लेके तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, और अब धुरंधर हम इनके फैन हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आर माधवन। सो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको, हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से। और हम यही कहेंगे कि ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए, ऐसे ही वो यू नो एक्सप्रेशन, जेस्टर्स, और वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसके थ्रू जो आप लोगों को दीवाना बना लेते हो, ऐसे ही दीवाना बनाते रहिए। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही खूबसूरत रहे, हेल्दी रहे, आप वेल्दी रहे, बहुत सक्सेसफुल आपकी पिक्चर्स इस साल हो, क्योंकि पिछला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा था। ये वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि धुरंधर और धुरंधर 2 रिलीज हुई थी। धुरंधर 2 में आपका जो रोल है वो भी ज्यादा है। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू, और ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ते रहे, यही हमारी दुआ है। और अपने फैन खूबसूरत रहे, हेल्दी रहे, आप वेल्दी रहे, बहुत सक्सेसफुल आपकी पिक्चर्स इस साल हो, क्योंकि पिछला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा था। ये वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि धुरंधर और धुरंधर 2 रिलीज हुई थी। धुरंधर 2 में आपका जो रोल है वो भी ज्यादा है। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू, और ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ते रहे, यही हमारी दुआ है। और अपने फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा एंटरटेन करते रहे, बिकॉज वी

बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से गाना उन्होंने बहुत ही प्यारा फरमाइश कर दिया है, और ये गाना है लता जी की आवाज में यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना। थैंक यू सो मच विशाल जी इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। एंड आई रियली रियली ट्रूली मीन इट। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, कभी आपने भी ऐसा सपना देखा है कि आप किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हो, आप उसे ड्राइव कर रहे हो और आप उसमें ड्रिफ्ट मार रहे हो? जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, ये किस बंदे ने नहीं देखा। मतलब मेल लिसनर्स जो है वो कहीं ना कहीं अग्री करेंगे कि यार ये तो सपना है। मतलब ये सपना ऐसा है जो कि हमेशा हमारे जहन में रहेगा, हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब रहेगा। वेल, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुन के आपको ऐसा लगेगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निव्या, बट या इट इज ट्रू। वेल, ऊबर ने जो है वो लॉन्च किया है एक न्यू ऊबर ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस जो कि टोक्यो में होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये ऊबर ने लॉन्च किया है ऊबर ड्रिफ्ट नाम का एक्सपीरियंस जो कि टोक्यो में होगा, जहां पे जापान जो है वो टूरिस्ट को चांस देगा राइड करने का शॉटगन को, और विद प्रोफेशनल ड्रिफ्ट ड्राइवर्स इन आइकॉनिक जापानीज स्पोर्ट्स कार लाइक द निसान सिल्विया S15 एंड निसान 180SX। सो जापान ये मौका दे रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है उबर। जी हाँ, और ये लिमिटेड एडिशन है। ऑफकोर्स ये जो मौका है ये लिमिटेड एडिशन है, ये बहुत बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। या You heard me right. So, यहाँ पर इन स्पोर्ट्स कार को आप बैठ सकते हो इन स्पोर्ट्स कार में, और आप वो जो ड्रिफ्ट ड्राइवर्स हैं जो कि लिटरली प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, उनके साथ आप बैठेंगे और आपको वो फॉर्मूला ड्रिफ्ट जो है वो देखने को मिलेगी, आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आप जिस गाड़ी में बैठोगे वो ड्रिफ्ट करेगी, मतलब यू आर गोना डू द ड्रिफ्ट। या आई नो इट साउंड सो क्रेजी, एंड आई एम लाइक व्हेन यू नो, जब मैंने इसके बारे में देखा, सुना, पढ़ा, आई वाज लाइक What? And मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या मुझे जापान जाना चाहिए, क्या मुझे टोक्यो जाना चाहिए, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, so you'll be taken down the legendary Moabra twin circuit where formula drift drivers perform high speed tandem drifting. जी हाँ, जो आपने मैंने आपको बताया सब कुछ, और फिर उसके बाद ये limited edition experience जो है वो include करेगा Uber Black Transport को, जो कि central Tokyo से 90 minutes में आपको वहां तक ले जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये तो तुमने ऐसी बात कर दी है कि हमको जापान जाना ही होगा। I know, मुझे पता है male listeners को तो ये बहुत ही ज्यादा interesting लगेगा, लेकिन फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। इफ यू आर इनटू फॉर्मूला वन रेसिंग एंड यू नो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, देन यू आर गोना बी लाइक वाओ, यू नो व्हाट, डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो या, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन ये चीज का सपना देख चुका है, ऐसा करने का सपना देख चुका है, कौन कौन अपने सपनों में एक बार तो किसी स्पोर्ट्स कार में ड्रिफ्ट मार चुका है, लेट मी नो। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, अब हम लोगों में से मैथ्स कितनों को पसंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डेफिनेटली मैथ्स कभी भी पसंद नहीं था, और ये चीज जो है वो मेरे लिसनर्स को बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने कुछ पढ़ा और उसने इतनी ज्यादा सेंस बनाई कि आई वाज लाइक कि मुझे मेरे लिसनर्स को ये बताना पड़ेगा। जी हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मैथ्स नहीं पसंद है, क्योंकि जिनको मैथ्स पसंद होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन उनको मैथ्स बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं होता उनको बिल्कुल नहीं होता है। सो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें लिखा हुआ था कि द ओनली टाइम आई बिकेम सीरियस विद मैथ इज व्हेन आई वांट टू ट्रांसफर मनी टू समवन। जी हाँ, द जीरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वाज लाइक यह आई मीन यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम मैथ्स को कितना भी कुछ बोल दें, हमें मैथ्स कितना भी ना पसंद हो, लेकिन जब बात आती है हिसाब किताब की तब हम एकदम सीरियस हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं, एक भी जीरो जो है वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और खासकर जब हम किसी को पैसे भेज रहे होते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर अच्छे से जो नंबर्स हमें डालने हैं हमने एकदम करेक्टली वो डाले भी हो, तब भी हमें लगता है कि हमने कहीं एक जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दी। जी हाँ, और उसके बाद भी हम पूरी तरह से चेक करते हैं, दो बार करते हैं चेक, तीन बार करते हैं कि किसी को भी एक जीरो ज्यादा लग गई तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे, एंड दिस इज अबाउट इट। जी हाँ, यहाँ पर लोग मैथ्स को लेकर कितने भी नॉन सीरियस हों, अपने हिसाब किताब से और अपने पैसे जब किसी को भेजने हो तब सारा का सारा मैथ जो है वो सामने आ जाता है, तब सारा का सारा मैथ जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हम सब सीए बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, हम एकदम मैथ्स के टीचर बन जाते हैं। जी हाँ, एंड इट इज व्हाट इट इज। सो आप मुझे बताइए कि आपने कभी किसी को एक्स्ट्रा जीरो लगा के पैसे भेज दिए और उसके बाद रिग्रेट किया, और उसके बाद वो पैसे आपको वापस मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे साथ कभी ना कभी तो हुए हैं, राइट? अगर हमारे साथ नहीं हो तो हमारे पेरेंट्स के साथ तो होता ही है। जरूर शेयर कीजिएगा ऐसा कोई किस्सा हुआ है तो। और यहाँ पर हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और इसका नाम थोड़ा थोड़ा प्यार, आई डोंट नो, बट ये गाना मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रहा था, एंड आई वाज लाइक कि ओके निव्या शर्मा, ये तो प्ले करना पड़ेगा मेरे लिसनर्स के लिए। सो हियर इट इज, और फिर जाते हैं सीधा अपने फेवरेट फेवरेट सेगमेंट विच इज ओल्ड इज गोल्ड की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, विच इज ओल्ड इज गोल्ड। अब आपको तो पता ही है कि ये सेगमेंट हमारे दिल के कितना करीब है, हमारे यानी कि मेरे और आप सबके। इस सेगमेंट में हम पुराने गानों के बारे में बात करते हैं, पुराने गाने आपके लिए प्ले करते हैं, आपको सुनाते हैं। कुछ फरमाइशें आपकी तरफ से आती हैं, कुछ गाने हमारी तरफ से जाते हैं, और ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप इसके दीवाने बन चुके हो। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट हमें मौका देता है सेलिब्रेट करने का उन आर्टिस्ट को जिनकी चमक उन सितारों से भी ज्यादा है जो कि आसमान पर हमें रोज दिखाई देते हैं। जी हाँ, उन्हीं सितारों में से एक सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर जी के बारे में। एंड यू नो व्हाट, जब मुझे इसके बारे में पता चला, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई वॉज लाइक क्यों, आई मीन क्यों। यू नो व्हाट द थिंग इज, कि जब भी हम किसी ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं, उनकी रुखसती के बारे में हमें पता चलता है, तो सीधा सबसे पहला थॉट ये होता है कि ओके, ये खूबसूरत गाने जो इन्होंने गाए हैं, ये खूबसूरत योगदान जो उन्होंने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया है, अब वो आवाज हमें सुनने को नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स सुनने को मिलेगी, लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है वो कभी भी कुछ नया नहीं गा पाएंगे, वो खूबसूरत आवाज अब हमें रियल में सुनने को नहीं मिलेगी। और वो थॉट, द मेयर थॉट ऑफ इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग। बट या मैं आपसे यही कहूंगी कि सुमन कल्याणपुर जी ने जब तक गाया है, जब तक उन्होंने इस खूबसूरती से हमारे दिल को लुभाया है, बहुत ही कमाल किया है। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर जी का निधन रविवार के दिन हुआ, यानी कि पिछले कल हुआ, मुंबई में। और उनके दोस्तों की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें यही कहा गया कि उम्र की वजह से ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, अब उनकी उम्र बढ़ रही थी और उस कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका निधन हुआ। एज सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी उन्हें नहीं थी, बट हाँ, उम्र बढ़ रही थी और उसी वजह से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्होंने रुखसती इस दुनिया से ली। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सुमन कल्याणपुर जी की आवाज हमारे मन में, हमारे जहन में हमेशा गूंजती रहेगी, उनके गाने हमें हमेशा प्यारे रहेंगे। और आपको अगर सुमन कल्याणपुर जी का कोई भी गाना पसंद है तो जल्दी से उसे भेज दीजिए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज वी शुड सेलिब्रेट हर, शी डिजर्व्स दैट। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है दिल तड़प तड़प के। जी हाँ, सबसे पहले मैं इस गाने से शुरुआत करूँगी और फिर उसके बाद मैं वो फरमाइशी गीत भी लूँगी जो कि आप भेज रहे हैं मुझे सुमन कल्याणपुर जी के। और सबसे पहले इस गाने से करेंगे शुरुआत।

जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करें सुमन कल्याणपुर जी के बारे में, तो मैं सबसे पहले इतना जरूर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप उनकी आवाज सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप लता जी की आवाज सुन रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा लगा आपको? क्योंकि उनकी आवाज का जो वॉइस टेक्सचर था वो बहुत ज्यादा मैच करता था लता जी से। जी हाँ, लता जी कुछ गाने गाती थी और कुछ गाने नहीं गा पाती थी, और उसी चीज के लिए सुमन कल्याणपुर जी की आवाज जो है, जब मेकर्स ने सुनी, जब उस वक्त डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सुनी, वो लिटरली उनकी आवाज के दीवाने बन गए। प्लस वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल थी, मतलब कुछ चीजें जो सुमन कल्याणपुर जी करती थी अपनी आवाज के साथ, वो बेहद बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। जी हाँ, 1960s से 1970s के बीच में उन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय गाने, यानी कि बहुत सारे फेमस गाने गाए हैं, उनको अपनी आवाज उन्होंने दी है। आपको ये भी बता दें कि उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है, मतलब उनको पद्म भूषण जो है वो भारत की सरकार की तरफ से मिला था उनके योगदान के लिए। और उन्होंने जितने भी एफर्ट्स के साथ अपने फैंस को एंटरटेन किया है, अपनी आवाज से उन्हें लुभाया है, उसके लिए जी हाँ, सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने जो हैं वो हमेशा हमारे बीच में रहने वाले हैं। और मैं इतना ही कहूंगी कि वो गाने इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आप उन्हें ऐसा लगेगा कि सुमन कल्याणपुर जी अभी भी आपके बीच मौजूद है। बट यही तो होता है जब एक आर्टिस्ट जो है इस दुनिया से रुखसती लेता है, वो पूरी तरह से रुखसत होता ही नहीं है। उनके गाने, उनकी आर्ट जो है, वो हमेशा हमेशा उन आसमान के सितारों की वजह साथ की तरह हमारे बीच जो है वो रहते हैं। और ये जो गाना है सुमन कल्याणपुर जी का, यही मैं आपको सुनाने वाली हूँ। रफी साहब के साथ उन्होंने इस गाने को गाया है, और गाने का नाम है तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे।

0: के दिल बन।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब एक और गाना हम प्ले करेंगे आपके लिए सुमन कल्याणपुर जी का। लेकिन यहाँ पर एक बर्थडे विश जो है वो भी जरूरी है, और ये बर्थडे विश हम एग्जैक्टली कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स जिन्हें हम बर्थडे विश करना चाहते हैं वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन ऑफकोर्स उनकी आर्ट हमारे साथ है, उनकी खूबसूरती आज भी हमारे जहन में रची बसी हुई है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मदर इंडिया ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ, नरगिस, मतलब उनके खूबसूरती के बारे में बात होती है, उनकी एक्टिंग के बारे में बात होती है, और राज कपूर ने तो उनके बारे में इतना तक लिख दिया था कि जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था ऐसा लगा था कोई अप्सरा आ गई है। मतलब नरगिस को जब राज कपूर पहली बार मिले थे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मुझे ऐसा लगा था कि ये जो लड़की है ये किसी दूसरी दुनिया से आई है, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी इनोसेंस से जो भरी हुई लड़की है वो इस दुनिया की हो ही नहीं सकती है। एंड या ये भी किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस है, जब राज कपूर उनकी माँ से यानी कि नरगिस की माँ से मिलने गए थे, उन्होंने घंटी बजाई थी घर की और सामने से नरगिस ने दरवाजा खोला था, उसी ही मीटिंग के बारे में राज कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा था। नरगिस की जो एक्टिंग है उसके तो दीवाने लोग हैं ही, लेकिन जो बहुत लोग कम जानते हैं वो ये है कि वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त प्रोड्यूसर भी थी। राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बहुत बड़ा स्टेक था उनका। जी हाँ, और ये बताता है कि कैसे वो ना सिर्फ एक्ट्रेस थी बल्कि एंटरप्रेन्योर भी थी। जी हाँ, यहाँ पर नरगिस की बहुत ही खूबसूरती जो है वो आज भी हमारे जहन में है। एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय गला, बट ठीक है, यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और जो एंड में करने वाली हूँ वो नरगिस के एक खूबसूरत गाने से करने वाली हूँ। और उससे पहले हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि अगेन सुमन कल्याणपुर जी का है।

जी दोस्तों, मैंने कहा था ना कि खूबसूरत आवाज लेकिन वर्सेटैलिटी ऑन इट्स पीक, ये है सुमन कल्याणपुर जी आपके लिए। दोस्तों इसी के साथ नरगिस का जन्मदिन है आज, तो नरगिस जी का गाना जो है वो हम प्रोग्राम के एंड में प्ले करने वाले हैं, मतलब उसी के साथ अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। वेल ऑफकोर्स अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, मतलब अगर आपकी इजाजत होगी तभी हम जा पाएंगे, क्योंकि अभी जाएंगे तभी तो कल वापस आएंगे। तो आपको क्या करना है, वेल ऑफकोर्स ये शाम जो कि जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि ठंड आ चुकी है वापस, और ठंड में शाम जो है वो जल्दी हो जाती है, तो खूबसूरत चांद को देखिए क्योंकि चांद जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। आसमान को देखिए, इस खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में उतारिए क्योंकि ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। एंड दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और अपनी निव्या शर्मा को याद करते रहिए, खासकर खाते वक्त, क्योंकि आपको तो पता ही आपकी आरजे निव्या कितनी बुक्कड़ है, तो खाते वक्त याद करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर टाइम्स। जी हाँ, एंड या दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए नरगिस का गाना, एंड आई हैव टू से दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। एंड अगर मैं बात करूँ नरगिस की, तो नरगिस का ये गाना मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, एंड सिर्फ मेरा नहीं, ये आपका भी फेवरेट होगा क्योंकि गाने का नाम है ये रात भीगी भीगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सुनते हैं इसको और आपसे मिलना होगा कल। बाय, सी यू, टाटा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

की से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन ब्रोंकस के मैच का काउंटडाउन शुरू। नेशनल रग्बी लीग में ब्रिस्बेन के फैंस के लिए बड़ी खबर है। ब्रिस्बेन ब्रोंकस का मुकाबला अगले कुछ दिनों में सनकॉर्प स्टेडियम में गोल्ड कोस्ट टाइटंस के साथ होने जा रहा है। टिकटों की बिक्री आज सुबह से ही तेज हो गई है और स्टेडियम के पूरी तरह भरने की उम्मीद है। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़े नियम। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से सुरक्षा जांच और सामान ले जाने के नियमों को और सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो किसी भी घरेलू या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तय सीमा से कम आधा घंटा पहले पहुंचे ताकि चेकिंग लाइनों की वजह से उनकी फ्लाइट न छूटे। वहीं ब्रिस्बेन काउंसिल का नया ट्रांसपोर्ट प्लान। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया बस और रेल लिंक कॉरिडोर प्लान जारी किया है। इस नए रूट के बनने से पीक आवर्स में सफर करने वाले कामकाजी लोगों का समय करीब 20 मिनट कम हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ ब्रिस्बेन में मौसम का मिजाज बदला। ठंड की दस्तक। ब्रिस्बेन में आज से आधिकारिक तौर पर सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह का तापमान पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे कम दर्ज किया गया। इसी के साथ ब्रिस्बेन का सबसे बड़ा विंटर फूड फेस्टिवल शुरू। ब्रिस्बेन के साउथ बैंक में आज से सालाना विंटर फूड एंड वाइन फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस बार फेस्टिवल में 50 से ज्यादा लोकल रेस्टोरेंट्स और इंटरनेशनल शेफ हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। ब्रिस्बेन रियल एस्टेट की आज जारी हुई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहर के अंदरूनी इलाकों में घरों और अपार्टमेंट्स की कीमतों में इस तिमाही में 8% का रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। सिडनी और मेलबर्न से लोगों के ब्रिस्बेन शिफ्ट होने की वजह से यहां घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले यूपीआई पेमेंट का नया नियम लागू। आज यानी 1 जून से ऑनलाइन पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे और फोन पे पर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ पिन डालना काफी नहीं होगा। अब आपको फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ रसोई गैस नियमों में बड़ा बदलाव। अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का कनेक्शन लग चुका है भारत में, तो सरकार के नए नियम के मुताबिक 30 दिन के अंदर अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने घटाया फ्यूल टैक्स। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सरकार ने आज सुबह तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स में भारी कटौती की है। वहीं पश्चिम बंगाल में कैबिनेट का बड़ा विस्तार। पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार में आज कुल 35 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट यात्री भीड़ में पिछड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पैसेंजर ट्रैफिक यानी यात्रियों की भीड़ के मामले में चेन्नई एयरपोर्ट अब खिसक कर 6 नंबर पर आ गया है। वहीं गुजरात के बन्नी घास के मैदानों पर विवाद। गुजरात के मशहूर बन्नी घास के मैदानों में एक बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इसके खिलाफ चिंता जताई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले पेरिस में चैंपियंस लीग की जीत के बाद भारी बवाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक बेहद परेशानी करने वाली खबर आई है। फुटबॉल क्लब पीएसजी की चैंपियंस लीग में लगातार दूसरी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे फैंस अचानक आपस में भिड़ गए। वहीं इसके साथ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर। वीकेंड पर अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में आज सुबह ईरान की मिलिट्री ने कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिका सीरिया के बीच बातचीत शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के बीच आज फोन पर एक बेहद अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच सीरिया पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाने और युद्ध से टूटे सीरिया को फिर से खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद पर चर्चा की गई। वहीं
इसराइल का लेबनान पर नया हमला, सीजफायर टूटा। लेबनान में चल रहे सीजफायर यानी युद्ध विराम के दावों के बीच इजरायली सेना ने आज सुबह दक्षिण लेबनान के कई गांवों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा सेकेंड हैंड न्यूक्लियर सबमरीन। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ओकस यानी कि AUKUS डील के तहत ऑस्ट्रेलिया अब नई सबमरीन बनाने के बजाय अमेरिका या ब्रिटेन से 3 सेकेंड हैंड यानी पहले से इस्तेमाल हो रही परमाणु पनडुब्बियां खरीदेगा। वहीं यूक्रेन में एंटी मिसाइल सिस्टम की भारी कमी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी है कि उनके देश के पास रूसी मिसाइलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फ्रेंच ओपन में आज भिड़ेंगी सम्बालेका और नाओमी ओसाका। टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट रोलांड गैरोस में आज 9वें दिन का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सम्बालेका का सामना 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका से होगा। वहीं फ्रेंच ओपन जोआओ फोंसेका ने कैस्पर रूड को हराया। फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वहीं कोको गाफ फ्रेंच ओपन से बाहर। महिला सिंगल्स में डिफेंडिंग चैंपियंस कोको गाफ का खिताब बचाने का सपना टूट गया है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका फुटबॉल टीम की फ्लाइट छूटी, वर्ल्ड कप तैयारियों को झटका। साउथ अफ्रीका के नेशनल फुटबॉल टीम बफाना फीफा वर्ल्ड कप 2026। कोको गाफ फ्रेंच ओपन से बाहर। महिला सिंगल्स में डिफेंडिंग चैंपियंस कोको गाफ का खिताब बचाने का सपना टूट गया है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका फुटबॉल टीम की फ्लाइट छूटी, वर्ल्ड कप तैयारियों को झटका। साउथ अफ्रीका के नेशनल फुटबॉल टीम बफाना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने ओपनिंग मैच के लिए

0: केंटकी टीम को 11-9 से हराकर इतिहास रच दिया। वहीं आईपीएल में गुजरात टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा, विजेता रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ
4: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਰਨ ਮਨੀ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਮਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿਦ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ। ਯੋਰ ਐਮਟੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਨਸ, ਬੋਟਲਸ ਐਂਡ ਕਾਰਟਨਸ ਰਿਸੀਵ ਅ 10 ਸੈਂਟਸ ਰੀਫੰਡ ਈਚ। ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਬਿਨ ਕੋਇਨ। ਸੇਵ, ਸਪੈਂਡ ਔਰ ਡੋਨੇਟ ਯੋਰ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਟੂ ਅ ਕੌਜ਼ ਯੂ ਸਪੋਰਟ। ਦੇਰਜ਼ ਅ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਨੀਅਰ ਯੂ। ਬੈਂਕ ਇਟ, ਡੋਨਟ ਬਿਨ ਇਟ। Visit the website to find your nearest refund point and start trading
5: containers
4: for 10 cents
5: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे, बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया, बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए

0: Omzorg, spelled OMSORG. Website omzorg.co.in. WhatsApp ya call kijiye. India number 8448381360. Omzorg Assisted Living, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
1: अरे वाह, इनका पता बताना.
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के धर जा रही हो।
2: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अदालत विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड।

0: And outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Qplate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
1: Containers
0: a number,
1: Containers for change rahi, apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kende haan. अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 एफ ते जी आरचे संदेश वालक दे नाल सी जुड़ चुके हो वाण चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हैगा जिहड़ा ओह शुरू हो चुक्या है। असीं इस वेले दे दौरान ढेर सारे गीत सुनने, गल्लां वी करनियां ने ते नालों नाल तुहानूं जानकारी वी दिंदे रहना कि कुछ दुनिया भर दे विच चल रिहा हैगा। हर चीज मिलेगी तुहानूं जानण दे लई। तुसीं बस की करना, तुसीं बस जुड़ना है, अपने फोन का इस्तेमाल करना है जो तुसीं अक्सर करने रहने हो। रेडियो बिरसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जिहदे बिरसवानी और बिरसवानी .com साडी ईमेल आई थी है। जरिया जिहड़ा अपनाना चाहुंदे हो अपनाओ, साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल तुसीं जुड़ो, अपनियां फरमाइशां भेजो, दिल दीआं गल्लां करो। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समां इहनां सोहणे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

जी आयनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टर दे फिल्म मेकर फरहान अख्तर है ने जिहड़े अजकल काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ने। फरहान अख्तर दी डॉन 3 काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ते डॉन 3 तो अचानक बाहर होने तो बाद ना रणवीर सिंह होर ज्यादा सुर्खियां दे विच आ गए क्योंकि वो हमेशा ही सुर्खियां च रहिंदे ने पर उन्हां दी इस वार सुर्खियां मुश्किलां करके आ क्योंकि मुश्किलां वधदियां दिख रही ने। हाल ही विच फैडरेशन ऑफ वैसटर्न इंडिया सिने इंपलॉयज ने उन्हां दे खिलाफ नॉन कारपोरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। मतलब के फेडरेशन दे डायरेक्टर्स कैमरामैन अते क्रू मैंबर्स हुण रणवीर सिंह दे नाल काम नहीं करनगे। इस वड्डे विवाद विच कारण हुण उन्हां दीआं ओह फिल्मां दी चर्चा तेज हो गई है जिन्हां नूं रणवीर सिंह ने रिजैक्ट कर दिता है। उन्हां बारे दस्सदी आं एक एक करके पर पहला सुनो एक गीत।

0: करे। राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट. आज

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी विकी कौशल दी बहुत ही ज्यादा सोहनी जी शानदार जी फिल्म ते ओ फिल्म है गया जी सैम बहादुर। सैम बहादुर काफी ज्यादा पसंद की गई है ना, तो सैम बहादुर दे लई भी मेकर्स दी पहली पसंद विकी कौशल नहीं सी, ओ सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह नु ए ऑफर हुई सी पहला फिल्म, पर उस वेले रणवीर अपनी फिल्म त्रासी विच कपिल देव दे किरदार निभा चुके सी, तुरंत बाद एक होर बायोपिक करना नहीं चाहते सी, नाल ही डेट सी समस्यावां दे चलदे उन्होंने फिल्म छड्ड दी थी। जिस तों बाद विकी कौशल ने सैम बहादुर दे नाल एक बार फिर जिहड़ी अपनी एक्टिंग हैगी है वह दर्शकों के सामने रखी, तो दर्शकों वालों भरपूर प्यार भी मिलिया।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वनसर ओवन एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण जिहड़ी फिल्म मैं दसन जा रही हां जिसनूं रणवीर सिंह ने रिजैक्ट कीता हैगा वो तुसीं मतलब कहोगे कि शायद ठीक है रिजैक्ट करके क्योंकि वो फिल्म जिहड़े एक्टर ने कीती ना उस ते बहुत सूट कीती सी नाम है जी कबीर सिंह। शाहिद कपूर दे करियर दी सब तो वड्डी हिट कबीर सिंह भी पहला रणवीर सिंह दी झोली विच डिगण वाली सी। डायरेक्टर संदीप रेडीवांगा इस दे लीड रोल दे लई रणवीर दे कोल गए सी पर उस समय रणवीर नूं इस किरदार दा पागलपन गुस्सा ते फिल्म दा डाकू माहौल थोड़ा ज्यादा लग्या। उन्हां नूं लग्या कि उन्हां दी इमेज ते भारी पै सकता है इसलिए उन्होंने मना कर दिता ते ए फिल्म चली गई जी शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर ते क्यारा अडवाणी की जोड़ी इस फिल्म के नाल इन्नी हिट हुई ना कि हर कोई इन्हां नूं हुण बहुत ज्यादा प्यार करता है।

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।
8: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए Commonwealth Civil Marriage Celebrant Parmanand को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street, Wollongabba में। For weddings, engagements, renewal of vows or commitment ceremonies घर पर, hall या park में, book with Parmanand. Call now on 04111270355. Remember, the number is 04111270355. या फिर ईमेल करें parmanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
9: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
10: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपनी चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जीआर छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। देखो साउथ दे दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर अपनी कल्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म अनिने द हिंदी रीमेक रणवीर सिंह दे नाल बनाउण दी प्लानिंग कर रहे सी। अनिने बहुत ही सोहनी फिल्म हैगी है, तुसी गूगल करके देख लो। रणवीर खुद भी इस दमदार रोल नू लैके बेहद एक्साइटेड सी। फिल्म दीयां तैयारियां शुरू हो चुकियां सी पर तद फिल्म नू लैके कानूनी पड़चे शुरू हो गए जिस वजह दे नाल अगे वध ही नहीं पाई ते आखिरकार मेकर्स नू इह वड्डा प्रोजैक्ट बंद ही करना पिया। अपरिचित याद है ना थोनू? याद कर लो दोबारा, याद आ जानी बहुत ही ज्यादा शानदार फिल्म है।

0: एक्सचेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: तेरे वर्गा आशिक वेखिया न तेरे वर्गी आशिकी।
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
7: So, aaj hi phone kijiye Commonwealth Civil Marriage Celebrant Parmanand ko 04111270354 par ya phir unse milye Level 133 Balaclava Street, Wollongabba mein. For weddings, engagements, renewal of vows or commitment ceremonies ghar par, hall ya park mein. Book with Parmanand. Call now on 04111270354. Remember, the number is 04111270354 ya phir email kare parmanand@optusnet.com.au par. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
8: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
9: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
8: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
9: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
8: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
9: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
10: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
11: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू

हां जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते जी अर्चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। अगली फिल्म हैगी जिहड़ी ओह भी बहुत खास हैगी है ते बहुत ही ज्यादा सोहनी हैगी है। उस दे विच भी लगता है कि शायद जिस एक्टर ने कीती है उस ते बिल्कुल सूट कर रहा है। फरहान अख्तर की ही गल कर रही है तो फरहान अख्तर की सुपर हिट फिल्म भाग मिल्खा भाग की गल हो रही है। थी भाग मिल्खा भाग दे लई भी रणवीर सिंह मेकर्स की पहली पसंद सी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा दी स्ट्रेंजर इन द मिरर विच खुलासा किया है कि रणवीर ने इस रोल दे लई ऑडिशन दिता सी अते उन्हां नूं कहानी बेहद पसंद आई सी पर बाद विच ना कुछ कारणा करके उन्हां नूं इस कल्ट फिल्म तो मना कर दिता गया। बाद विच फरहान अख्तर ने यह रोल निभाया सीगा ते उन्होंने मना किया फरहान की झोली च फिल्म गई हैगी ते फरहान अख्तर ने इस किरदार दे नाल पूरी ईमानदारी कीती।

जी वेला तो हो चुका है तुहाडे तों इजाजत लैण दा, पर इजाजत नहीं लैणी क्योंकि एक होर आउण वाली फिल्म हैगी है जिहड़ी उस दे बारे विच गल करनी हैगी। उह बहुत खास फिल्म है, संजय लीला भंसाली दी फिल्म है ते फिल्म दा नाम है जी लव एंड वॉर। लव एंड वॉर दे लई पहला रणवीर सिंह दे नाल गल हुई सी, पर जद उहनां नूं पता चलिया कि ए रोल फिल्म दा मेन लीड नहीं है तां उहनां ने इस ऑफर नूं ठुकरा दिता। बाद विच ए रोल विकी कौशल दी चोली विच जा गया ते हुण विकी कौशल रणबीर कपूर ते आलिया भट्ट दे नाल इस ड्रामा फिल्म दी स्क्रीन शेयर करनगे। तिन्ना नूं लैके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हैगी है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला इन्हां दी फिल्म दे विच। बाकी तुहानूं की लगता है कि रणवीर सिंह ने इन्हां फिल्मां नूं ना कह के उन्हां दा डिसीजन सही सी या नहीं, क्योंकि जिन्हां ने किरदार निभाए हैगे ने बहुत बाखूबी निभाए हैगे। बाकी तुसीं अपनी राय जरूर दसदे रहा करो। रेडियो बिसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिसवानी @bisawani.com साडी ईमेल आईडी है जरिया, जिहड़ा वी तुसीं अपनाउणा चाहुंदे हो अपनाओ, साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहा करो। तां मैं इही कहणा है जी कि कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर, QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110 इन फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। Due to the rainy weather, QBOG ka Sunday 31st May game postpone ho gaya hai. Ab games honge Thursday 4th June se Sunday 7th June tak aur finals Sunday 14th June ko hoga at Akashia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Akashia Ridge 4110. Ground pe chalega full

पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक, तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brizwani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स। बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जाने तमन्ना किधर जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
5: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदलता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी।

करके, कोई साजिश करके उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी को कुछ मिलना है तो आपके अपनों को ही। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी आप किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा खुली रखिए कि उस रिश्ते से भी अगर धोखा मिला तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बहुत करीबी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए एक जितना भी भरोसा किसी रिश्ते पर हो, एक जो है वो निगाह उस रिश्ते पर ऐसे जरूर रखिए जो उस रिश्ते की कमियों को आपको दिखा पाए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और हमारा आपका ये जो साथ है जीवन आधार पर, ये हर साथ के साथ, हर दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है और जीवन की सच्चाई को, जीवन के आधार को, जीवन के बेस को हम हर रोज सुबह मिलकर साथ में ढूंढते हैं। आज भी एक यही कोशिश इस सफर में और अभी इस अगले गाने के साथ इस कोशिश को अंजाम देंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर मेरे साथ जीवन आधार।

जाने के बाद एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, ये है सफर जीवन आधार का। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, जीने की वजह भी देता है और जीने की वजह छीनता भी है। कभी कभी जीवन में वो दौर आता है जो शायद आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये वो दौर होता है जब आपको जीवन में सबसे अच्छा मिलने वाला होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आता है। लेकिन उसकी मर्जी अगर हम और आप समझ लेंगे तो फिर हम और आप भी परमात्मा नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है, क्या सोचता है वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर वो हमें कुछ ऐसा देता है कि हमें लगता है कि शायद हम तो इस लायक थे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है जब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। आइए उसी दौर के नाम जो हमें हिलाकर रख देता है, हमें पूरी तरह से बेबस कर देता है, उस दौर के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत, क्योंकि ये वो दौर भी है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की,

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर हैं क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी, जहां पर हर रोज होती है थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ढेर सारी पॉजिटिविटी। जी हाँ, तो दोस्तों आज ट्यूसडे है और याद रखिए दोस्तों, हर नया दिन जो होता है ना, एक ब्लैंक पेज की तरह होता है। कहानी आपको ही लिखनी होती है। अब उस कहानी में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स डिपेंड्स ऑन अस। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा हर कहानी में कुछ ऐसा लिखें जिससे आपकी मुस्कान बरकरार रहे, आपका दिल, आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहे, हम अच्छी चीजें सीखें, अच्छी चीजों को ही हम अपनी लाइफ में एंटर करें, तो इस चीज से हम हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है जानने का सफर। तो देर ना करते हुए सुनाती है आपकी दोस्त ये प्यारा सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिजवाणी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और ये प्यारे प्यारे गीत आप सभी को एनर्जेटिक जरूर बना रहे होंगे। तो आइए फिर अपनी नजरों को थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज की ओर डालते हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक का अपडेट आ रहा है दोस्तों। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। विक्टोरिया पार्क में नए ओलंपिक स्टेडियम के अर्ली कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफिशियली शुरू हो गए हैं। ये स्टेडियम फ्यूचर में लगभग 63,000 स्पेक्टर्स को होस्ट कर सकेगा और ब्रिस्बेन की स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का नया लैंडमार्क बनने वाला है। तो है ना बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेनी।

हाँ जी, जो म्यूजिक के फैंस हैं, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज मेरे पास है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। ब्रिटिश म्यूजिक ग्रुप मैसिव अटैक 16 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर आ रहा है। जी हाँ, और खास बात यह है कि उनका ब्रिस्बेन कॉन्सर्ट भी शेड्यूल किया गया है। तो दोस्तों, म्यूजिक फैंस के लिए ये काफी एक्साइटिंग खबर है। क्यों जी, हो गई ना एक्साइटमेंट? तो ऐसी खबरों को सुनने के लिए आप सुनते रहिए अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

चलिए जी, इस गीत के बाद अब मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग मोमेंट को शेयर करने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, रुकिए, अपनी इंस्पायरिंग मोमेंट नहीं, मैं बॉबी देओल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बॉलीवुड की बात करने वाले हैं। दोस्तों, बॉबी देओल ने रिसेंटली एक इमोशनल बात शेयर की है। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब फिल्म जब वी मेट उनके साथ बनने वाली थी। हाँ जी, उन्हीं के साथ, यानी बॉबी देओल के साथ। हैरान होगे ना, लेकिन दोस्तों बनी नहीं। लेकिन बाद में रोल जो है शाहिद कपूर को मिल गया। बॉबी ने कहा कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें पेशेंस और रीसाइलेंस सिखाई है, और आज उनका कमबैक बॉलीवुड के सबसे इंस्पायरिंग जर्नीज में से एक माना जा रहा है। तो देखो, बॉबी देओल का ये था इंस्पायरिंग मोमेंट। चलिए आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रह्मवाणी। जाइएगा कहीं भी मत, ये सॉन्ग सुनाकर आ रही हूँ लौट कर वापस।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों, बॉलीवुड और ओटीटी लवर्स के लिए जून का महीना काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। अरे रुकिए, सस्पेंस में नहीं रख रही हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। अब वो एक्साइटिंग रहने इसलिए वाला है क्योंकि इस हफ्ते कई नए शोज और फिल्म जो है ऑडियंस का एंटरटेनमेंट डोज बढ़ाने आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गुल्लक सीजन 5 की, जो अपनी सिंपल और रिलेटेबल फैमिली स्टोरीज के लिए पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिश्रा परिवार की। दोस्तों, मिश्रा परिवार की जो रोजमर्रा की जिंदगी और उनके प्यारे से मूवमेंट्स एक बार फिर से व्यूज को हंसाने और इमोशनल करने के लिए तैयार है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें फिल्म बंदर की, जी हाँ, वो भी काफी सुर्खियों में आ रही है। फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट को लेकर ऑडियंस के बीच जो है क्यूरियोसिटी बनी हुई है दोस्तों, और जो क्रिटिक्स है उसके भी मतलब प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा नजर बनाया हुआ है। आपको बताने इसके अलावा जून में कई नए ओटीटी रिलीजेज और थिएटर प्रीमियर्स लाइनअप है, जिसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, थ्रिलर है और फैमिली एंटरटेनमेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों, ये मत बोलना कि मैंने आपका वीकेंड का शेड्यूल नहीं बनाया। तो अगर आप वीकेंड पर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपके दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन ने आपकी वॉच लिस्ट जो है तैयार कर दी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस महीने कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है। कमी आपको सॉन्ग्स की भी नहीं रहेगी और कमी आपको बातों की भी नहीं रहेगी। आप यूं ही ड्राइव करते रहें, साथ में जानने की बातें सुनते रहें रेडियो ब्रिस्वानी में। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, रुकिए रुकिए, मुझे एकदम से ना कुछ बात याद आई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ही दी जाए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिराफ की जुबान लगभग 20 इंच तक लंबी हो सकती है, और यही नहीं, वो अपनी जुबान से खुद के कान भी साफ कर सकता है। हाँ जी, यही बताना था। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो रिस्वानी।

हाँ जी, इसी गीत के साथ दोस्तों ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सेफ ड्राइव करें, और याद रखिए जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट मोमेंट जरूर होता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त चांदनी और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गीत की तरफ, और अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी। एंड प्लीज प्लीज प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ऑफिस जाते जाते आप इंजॉय कर रहे हैं या वहीं ट्यूनिंग कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज, बॉलीवुड, बहुत कुछ। मेरा मन करे मैं तो आपके साथ बोलती ही रहूं, लेकिन जी अब मैं सोच रही हूं कि थोड़ा दूसरे आर्टिस्ट को भी मौका दिया जाए अपनी बातें बोलने का। अब मुझे दीजिए ज्यादा, सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

बांग्लादेश में एक महीने में 32 मौतें, महिलाओं बच्चों पर बढ़ा अत्याचार। बांग्लादेश में भीड़ी हिंसा और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति चिंताजनक रूप ले चुकी है। मानवाधिकार संस्कृति फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 32 लोग भीड़ द्वारा मार दिए गए, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में 53 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, फ्रांस ने जब्त किया टिटन कर दुभड़ गया रूस। रिपीट, फ्रांस ने अटलांटिक महासागर में रूस के तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। रूस ने इस तेल टैंकर को हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की है। रूस ने फ्रांस की इस कार्यवाही को अवैध बताया और चेतावनी दी कि मॉस्को अपने शिपिंग ऑपरेशंस की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा। दक्षिण कोरिया में रक्षा कंपनी में विस्फोट, आंख लगने से 5 की मौत। दक्षिण कोरिया में एक रक्षा कंपनी में विस्फोट और आग लगने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये विस्फोट दक्षिण कोरिया के डेजान शहर में हनवा एरोस्पेस के रॉकेट प्रोपेलेंट के उत्पादन लाइन में हुआ। विस्फोट के कारण सहित अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं थे। आपातकालीन अधिकारी यून सियोंग सू ने बताया कि ये क्षेत्र सरकारी नामित एक सुरक्षा केंद्र है। मलेशिया में अब बच्चे नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। नियम का पालन न करने वालों पर लगेगा जुर्माना। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है। नियम के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी और 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स को अकाउंट बनाना रोकना होगा। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब सहित अन्य पर भी लागू होंगे। जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत का दिव्यास्त्र MK1 का टेस्ट सफल। भारत के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए हैरोविट ने जोधपुर में टैक्टिकल एट्रिंग म्यूनिशियन प्लेटफॉर्म MK1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दिव्यास्त्र MK1 के परीक्षण के दौरान भारतीय सेना का वरिष्ठ नेतृत्व भी मौजूद था। इस प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर दिव्यास्त्र MK1 UAV को एक वाहन पर लगे मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रेस वाणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो मेजबानी पर। मैं जतीश पूरन आपका साथ हो गया हूं दोस्तों, और अमिता तो अभी छुट्टी पर है। खैर चलो, आप लोग साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं हमारे ब्रिस्बेन का जो रास्ते का क्या हाल है। दोस्तों ब्रिस्बेन के लिए कहा गया है कि यानी रास्ते पर गेटवे मोटरवे बोल्ड हिल स्टेशनरी व्हीकल है, कोई खास ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है दोस्तों। सो दैट्स अबाउट ऑल आई कैन सी, इतना भी मैं देख रहा हूँ। तो चलो और मौसम की ओर चलते हैं दोस्तों। आज बहुत ठंड, आज 8 डिग्रीज था, मेरे एरिया में 6 था। और चले कल से ठीक हो जाएगा, कल से 15 रहेगा मिनिमम, 15 and 25, थर्सडे को 13 and 22 रहेगा, बारिश नहीं होने को है दोस्तों। फ्राइडे को मोस्टली सनी, 13 and 21 रहेगा, सैटरडे को 11 हो जाएगा, 11 and 21, संडे को 12 and 22, और सोमवार को कुछ आवर्स कहा गया है 14 and 22 रहेगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा वेदर, और क्या दैट्स अबाउट इट। तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर है 04300031701। और यस विनी, यू डिड गेट इट राइट। और क्या बताऊँ मैं, जो कल मैंने क्विज किया था तो चलो जो मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था मैंने आपसे, जी हाँ मैंने आपसे पूछा था कि जी नहीं, फिजी न्यूज़ भी मुझे देना है। चलो इस गीत के बाद मैं फिजी न्यूज़ दूंगा, लेकिन पूछा था मैंने आपसे जो क्विज़ था वो क्या था, चलो मुझसे इतना प्यार मत करो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, मैं एक आवारा बादल की तरह हूँ, कहीं भी बह सकता हूँ। कौन सा गीत था दोस्तों, चलो ये गीत था। और ज़रूर आप इसमें पार्ट ले दोस्तों। चलिए विनी, यू आर राइट।

तो ये था गाना जो क्विज मैंने कल किया था, तो चलो कल के लिए, जब कल आपको आंसर देना पड़ेगा, आज का जो क्विज है, हर लम्हा किसी खास शख्स की याद दिल में बसी रहती है, दूर होकर भी वो हर पल करीब महसूस होता है। ठीक है, इतना ही बोलूंगा मैं, आप बताइए कौन सा गीत है। ओके, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, और मौसम बहुत ठंड है यहाँ पर, स्टूडियो भी काफ़ी ठंड है। और चलिए, फिजी न्यूज़ में कहा गया है, फ्यूल प्राइसेस जंप्ड अगेन, पेट्रोल डीजल एंड एलपीजी प्राइसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम जून 1st, और लीडिंग टू लॉन्ग क्यूज एट सर्विस स्टेशंस बिफोर द चेंजेस टुक इफेक्ट। वेंडर्स एंड बिजनेसेस आर वार्निंग दैट हायर फ्यूल कॉस्ट आर ऑलरेडी पुशिंग अ फूड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइसेस। मुझे तो लग रहा है कि ये क्राइसिस तो शायद थोड़ा ओवर होने वाला है, कुछ कभी थोड़ा थोड़ा सा बम गिरा देते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा गिरा देते हैं, कुछ समझ में नहीं रहा क्या हो रहा है दुनिया भाई, क्या हो रहा है। टीचर्स आस्क फॉर 15% पे राइज, द फिजी टीचर्स यूनियन इज कॉलिंग ऑन द गवर्नमेंट टू इंक्लूड a 15% salary increase in the upcoming national budget, saying teachers are struggling with rising living cost and retention issues. New police bill proposals, discussion continues around the proposed Fiji Police Bill 2026. Reports indicate police could receive broader powers in some situations, including dealing with intoxicated persons and managing roadblocks under the proposed legislation. Okay. One-year-old dies in Lautoka crash. A toddler died after her vehicle reportedly left the road near the Barara bypass in Lautoka. Several family members were also injured and taken to hospital. Police investigations are continuing. ओके, बस इतना ही, बस है दोस्तों, और न्यूज़ हम बाद में आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, नंबर है 04300031701, या आप स्टूडियो पर कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर है 32791701। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों।

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, देखिए मिडल ईस्ट टेंशन एस्केलेट, ईरान यूएस इजराइल क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस सर्ज क्लोज टू 100 अ बैरल एज टेंशंस बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इजराइल इंटेंसिफाइज. Reports say communication channels between Iran and the U.S. have broken down again, raising fears of further strike and instability in the Gulf region. मैं तो सोचा था शायद कम होगा. Iran linked missile and drone activity has also been reported near U.S. and regional bases, adding pressure on global security and energy markets. क्या हो रहा भाई. खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं. और जैसे

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे June 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो ब्रिस्बेन पर। और देखिए, साउथ कोरिया इज वोटिंग फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस लिंक्ड टू द फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन। The election is being closely watched across Asia with economic stability and national security as key issues. Election abhi sab bagal ho raha hai dosto. Colombia mein bhi election results first round. Colombia has seen a far right candidate lead the first round, setting up a runoff against a left wing opponent. The result highlights a sharp political divide in the country heading into the final vote. To duniya mein sab chalta rehta hai dosto, kya karenge tanhai tanhai।

जी हाँ, तन्हाई तन्हाई अभी आपने सुना दोस्तों। और इधर तो भाई आज बहुत ज्यादा ठंड है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग दूर दूर से न्यूजीलैंड में है। वंडर न्यूजीलैंड में क्या हाल हुआ, क्या होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि शायद इस साल जो विंटर है बहुत खतरनाक रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। कहा गया है कि अबव एवरेज टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर। क्यों? बिकॉज ऑफ एल नीनो का इफेक्ट जो है हमारे लिए, इस टेम्परेचर ऊपर जाएगा, लो नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलो, ये खुशखबरी है मेरे ख्याल से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है आज भाई इधर इधर वेस्ट हमारे जो एरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है दोस्तों। तो चलिए, अबाउट कपल ऑफ डिग्रीज इधर उधर रहता है। खैर चलिए, नंबर है 04300031701 या 32791701। और आपको बता दूं, अभी इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से संदेश, 3 बजे से निव्या के साथ। और चलो, हैप्पी बर्थडे। आज अगर आपका दिन आज का है बर्थडे है, तो हैव अ ब्यूटीफुल बर्थडे। और अगर एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, और क्या है, मैं क्यों हंस रहा, आप जान गए होंगे। शायद कुछ लोग बड़े खुश होंगे जब रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, अगर बुरा रिलेशनशिप रहा होगा। खैर ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों, मिलजुल कर एक ही डायरेक्शन में पहिया को घूमना चाहिए दोनों, ठीक है। नहीं, अगर एक इधर घूमेगा उधर घूमेगा तो ये फिर ठीक नहीं रहेगा, राउंड ही राउंड जाओगे आप। तो इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि मिलकर साथ में चले और हैव अ लवली लाइफ। और चलो, अगला जो गीत है ये लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत है दोस्तों।

और बात भी सही है दोस्तों, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो चला गया वो चला गया, है कि नहीं, तो बस यादें रह जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला गीत आप सभी के लिए, और ये बजना नहीं चाहता।

मैं चली ना पूछो किधर। अगर आपसे कोई पूछ बैठता, आप कहीं जा रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता अच्छा किधर जा रहे हो, आपको कैसा लगता? कुछ लोग जो इसको पसंद नहीं करते हैं ये सवाल जो है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए क्विज जो कल के लिए है, हर लम्हा किसी खास शख्स की याद दिल में बसी रहती है, दूर होकर भी वो हर पल करीब महसूस होता है, बताइए कौन सा गीत है, कल आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और कुछ नया या कुछ पुराना गीत आप सभी के लिए, एक नया गीत है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और मैं हूँ जितेश पूरन सोलो आपके साथ। यूजुअली मेरे साथ मेरे को होस्ट रहती है, लेकिन वो छुट्टी पर है, कुछ मालूम नहीं किधर है, क्या कर रही है। मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने बिटिया के साथ, दोनों माँ बेटी गए हैं और दिस इज सो लवली। अभी तो वो सो रहे होंगे। खैर, अभी आप हमारे साथ हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ता और बचा है, हफ्ता नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद में अमिता आ जाएंगी। ठीक है, देखिए हर गीत जो लाइंस होते हैं वो लिटरली नहीं लिया जाता है दोस्तों, कभी कभी ये पोएटिक फॉर्म में ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, और कभी कभी जेंडा भी जानबूझकर ये रॉन्ग जेंडा भी लगाते हैं जस्ट टू पुट एम्फसिस ऑन द सॉन्ग। ठीक है, अगला जो गीत है दोस्तों उसमें यही कह रहा है कि मैं तुमसे आज ही नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से प्यार करता हूँ, करता आया हूँ, और मेरा जो प्यार है ना ये टाइमलेस है, एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कौन सा गीत है दोस्तों, चलो सुनते हैं।

जी हाँ, ये फील गुड रोमांटिक हैप्पी सॉन्ग। हम जो इंसान है ना, हम रोमांटिक सॉन्ग पसंद करते हैं और कभी जस्ट फन लविंग सॉन्ग पसंद करते हैं और कभी क्या बोलते हैं, हैप्पी सॉन्ग, लव सॉन्ग, फील गुड सॉन्ग पसंद करते हैं और कभी कभी जो सैड सॉन्ग है वो भी अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? जैसे अभी अगला गीत मैं बजाने जा रहा हूँ, एक ये गाना उस इंसान के बारे में है जो ज़िंदगी में अकेला रह गया है, जहाँ पहले प्यार, दोस्ती या अपने लोग थे साथ में, ठीक है, और अब सब दूर हो गए हैं। तो ऐसे भी कुछ गीत होते हैं दोस्तों जो शायद हमको अच्छा लगता है सुनने में।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
11: जी हाँ दोस्तों, रेडियो ब्रिसवानी आप सुन रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, बस आगे बढ़ने की हिम्मत और सच्चा दिल होना जरूरी है कि नहीं? जी हाँ, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, बस आगे बढ़ने की हिम्मत और सच्चा दिल होना जरूरी है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए ये थॉट है आपके लिए और सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक और उदित नारायण से इस गीत को सुना आपने। जी हाँ, शाहरुख खान और जूली चाह के लिए, जूली चावला के लिए। और देखिए, एक बंदा है जो बहुत जोर से कोशिश कर रहा है, जो मैंने पूछा आपसे कि ये कौन सा गाना है। ठीक है, चलो, अगर शायद अभी आपने रेडियो ऑन किया होगा और शायद नहीं पता चला होगा, नहीं सुने नहीं होंगे, तो एक जो क्विज है आज, जो जिसका रिजल्ट मैं कल दूंगा न्यूज़ के बाद, ये कौन सा गाना है, हर लम्हा किसी खास शख्स की याद दिल में बसी रहती है, दूर होकर भी वो हर पल करीब महसूस होता है। एक छोटा सा शब्द अगर मैं कह दूं दोस्तों, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा गीत है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर इट। ठीक है, तो जरूर दोस्तों बताइए कौन सा गीत है वो।

अपने स्टाइल में इस गीत को गाया इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उम्मीद है आपको भी अपना अच्छा लगा होगा। गीत के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की है इन्होंने और बहुत अच्छा लगा। होपफुली यू हैव लाइक्ड इट टू। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और कभी कभी गीत में दोस्तों एक लाइन में सब कुछ कह देते हैं कि नहीं। अगला जो गीत है इसमें शख्स अपने महबूब से दुआ करता है, राइट, मांग करता है कि देखिए जो खुशी दी है वो कभी दर्द में ना बदले। ये सबका डर रहता है हमेशा ना कि कभी ऐसा ना हो। ये तो चलो कौन सा गीत है, ये बहुत प्यारा गीत है दोस्तों और गाया है रफी साहब ने। और सुनते हैं, जी हाँ, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, कभी गम न देना खुशी देने वाली। देखो एक लाइन में सब कुछ कह दिया है।

मगर दोस्तों जब हम गीत बजाते हैं तो ऐसे मूड में हो जाते हैं कि चलो फिर बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और लेकिन चलो देखते हैं क्या होगा आगे। अगला जो गीत है ये मेरे ख्याल से शेख डेडी, अगर आप सुन रहे हैं, इज वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स। जी हाँ, पकीज़ा का गीत है दोस्तों, चलो दिलदार चलो।

11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम है और फिर 3 बजे से आप निविया के साथ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें जो है ना आती है ताकि हम गिरे नहीं, ओके, गिरना मत, बल्कि सीखें और स्ट्रोंग बन जाए। तो जब भी कुछ जिंदगी में होता है, जो कुछ हो रहा है दोस्तों, ठीक ही हो रहा है। शायद आपको देखने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन आइंदा शायद आपको नहीं मालूम है कि शायद आगे के लिए ये आपके लिए और अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस है लाइफ में ना। तो आप घबराए मत, जस्ट फेस इट और कुछ सीखें।

और दोस्तों 8:20 हो गए हैं, 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा, फिर कल तक के लिए साथ थोड़ा टूटेगा जी हाँ, कल सुबह फिर जुड़ेगा, लेकिन इसके बाद आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ। और एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि

थैंक यू विनी, आपने पकड़ लिया। जी हाँ, जब मैंने बजा दिया तो मैंने सोचा तो ये तो मैंने बजा दिया था, लेकिन मैंने बोला चलने दो और खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि बड़ी सक्सेस की वेट मत करो दोस्तों, ठीक है। डोंट वेट फॉर द बिग सक्सेस, क्योंकि जो छोटी छोटी खुशियां हैं यही जिंदगी को बड़ी बना देती है दोस्तों, है कि नहीं? Yeah, so okay, Vinny, you are alert.

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन। आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: चलो कुछ हेल्थ में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं जानता हूँ बहुत से लोग एनीमिक हो जाते हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं, और फिर इन्फ्यूजन करना पड़ता है, बहुत ट्रबल उठाना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए, इसमें फोलेट जो है इज अ बी विटामिन, ओके, फोलेट इन अदर वर्ड्स B9 जो विटामिन है, दैट योर बॉडी नीड्स टू मेक न्यू सेल्स एंड हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स है B9 से भी बनता है दोस्तों। व्हाई इज फोलेट इम्पोर्टेंट? ठीक है, हेल्प्स प्रिवेंट एनेमिया। लो फोलेट कैन लीड टू टाइप ऑफ अनेमिया वेयर योर ब्लड डजंट मेक इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कॉजिंग टाइर्डनेस, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेल स्किन। वर्क्स विद विटामिन B12। फोलेट और B12 जो है, दोनों बी विटामिन्स है, दे वर्क टूगेदर टू मेक रेड ब्लड सेल्स एंड सपोर्ट द नर्वस सिस्टम। अ डिफिशियंसी इन आइदर कैन कॉज सिमिलर सिम्टम्स। और हाँ दोस्तों, तो ये हेल्थ टिप आपके लिए। और वैसे जो B12, जैसे मैंने पहले कहा था, इफ समवन इज लो जो फोलेट, कम ऑन, माफ करना दोस्तों, इफ समवन हैज लो फोलेट और लो B12, simply taking folate supplements may not solve the problem if B12 is also low. Doctors often check both together, or dono check karte hain, or simply taking folate, it's not solve the problem when investigating anemia or fatigue. To dono test karte hain dosto, aur jo B12 kam hota hai, तो जब बहुत डेंजरस लेवल्स हो जाता है, B12 जो है दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, देन व्हाट दे डू इज दे विल गिव यू इंजेक्शन। कैसे, मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरा है लो B12 हो जाता है। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन जो ब्लड में है, जो B12 कम हो जाता है। यूजुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, B12 काफ़ी दिन तक स्टोर होता है, लेकिन देयर सम पीपल दे डू नॉट प्रोड्यूस B12, तो इंजेक्शन भी लगाते हैं जब बहुत क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो वंस अ ईयर यहाँ पर आपको फ्री चेकअप होगा B12, और अनलेस यू आर अ B12 पेशेंट, तब इनमें पाबंदी नहीं है। द डॉक्टर विल डिटरमिन कब आपको टेस्ट करना है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट योर B12 लेवल इज अप। अगर नहीं तो कभी इंजेक्शन लगा देंगे, या B12 आपको लेना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इट कैन नॉट बी टॉप्ड अप बाय द फूड ओनली. वैसे फूड प्रोड्यूस करता है, ये जो B12 प्रोडक्शन है दोस्तों, दिस इज थ्रू जो मैं लास्ट पढ़ा था, हमारा इंटेस्टाइन जो हमारा वेस्ट में से घींचता है. जी हाँ, इंटेस्टाइन जो है B12 होता है. तो ये क्या अजीब बॉडी है हमारा लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तो अपना डॉक्टर से आप बात करें. इफ़ यू फीलिंग ऑल द टाइम अगर टायर्ड फील कर रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा आई वॉन्ट अ B12 टेस्ट, बिकॉज यहाँ पर जो रेगुलर टेस्टिंग करते हैं उसमें B12 इंक्लूडेड नहीं होता दोस्तों. यू हैव टू आस्क फॉर इट. ओके, तो टॉक टू योर डॉक्टर अगर आप हमेशा वीक फील करते हो, एनेमिक हो.

अनू मलिक के संगीत पर दोस्तों अलका याग्निक उमराव जांग का गीत अभी आपने सुना सलाम। जब हम बात कर रहे थे फोलेट के बारे में, विटामिन बी नाइन याद रखना, आप मालूम नहीं आप लोग खाते या नहीं खाते हैं, अगर आपका हर एक घर में होना चाहिए एक प्लांट मोरिंगा यानी सैजन, ठीक है। अब जब दाल बनाते हैं तो उसमें पत्ता डाल दो। मैं तो आई ईट रो लाइक सैलड, वंस यू एक्वायर द टेस्ट यू रियली लाइक इट। और या जो उनका ड्रम स्टिक या जो फ्रूट होता है उससे भी आप दाल में डाल सकते हो, वेरी बेनिफिशियल, बहुत मोरिंगा में बहुत पावा है दोस्तों। मोरिंगा लीव्स आर अ गुड नेचुरल सोर्स ऑफ फोलेट अलोंग विद आयरन और विटामिन सी इन अदर न्यूट्रिएंट्स। दे कैन बी अ यूजफुल पार्ट ऑफ अ डाइट एम्ड एट सपोर्टिंग हेल्थी ब्लड प्रोडक्शन। तो मोरिंगा ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। हाँ तो मेक श्योर यू इट दैट। ओके चलिए, वाह ये गाना तो बहुत दिन हो गए हम मुकेश के गीत नहीं सुने हैं दोस्तों, चलो सुन लेते हैं। तुम्हारे प्यार में क्या

ये प्यार बड़ा गड़बड़ चीज है दोस्तों, मालूम नहीं आदमी को क्या से क्या बना देता है। चलिए अगला जो गीत है, तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हारे हुस्न को लफ्जों में बयान करना मुश्किल लगता है। कुछ कहने की कोशिश करता हूं लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम्हारी असली खूबसूरती को कम ना बता दूं। ओ क्या बात है दोस्तों, चलो कौन सा गीत है लो सुनिए।

और दोस्तों समय कम है और कहा गया है कि किसी ने मुझे भेजा अभी कि देयर वाज अ लेडी जिनका बॉडी में बहुत खारिश हो रही थी, सब कुछ डॉक्टर ने ट्राई किया सब कुछ, लेकिन एक लेडी आकर उनसे कहा कि देखिए क्यों नहीं आप मोरिंगा खाते हो। उन्होंने कहा 3 दिन में लगातार उन्होंने खाया और 3 दिन में उसका इचिनेस कम होने लगा। दोस्तों तो सोचिए ये सोचने वाली बात है दोस्तों, यानी कि आप भी कोशिश करिए अगर हो ऐसा कुछ थोड़ा सा खाइए आप। तो पहले थोड़ा क्या बोलते हैं दाल में छोड़िए और मोरिंगा का आपके पेट के या क्या बोलते हैं डाइजेस्ट अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भाई मोरिंगा खाइए आप रोटी के साथ मिलाकर। कुछ लोग वो नारियल के गरी के साथ भी बनाते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है विद द रोटी। अगर है कॉन्स्टिपेशन है ट्राई जस्ट ट्राई ईटिंग इट रॉ अपने सैलड की तरह, ठीक है। तो चले अगला जो गीत है दोस्तों ये शायद हमारा लास्ट रहेगा, अगर नहीं तो देखते हैं। चलो बहुत ये भी बहुत प्यारा गीत है दोस्तों, छू लेने दो नाजुक होंठों को।

किसी ने पूछा मुझे डिस्क्राइब करिए गाना में क्या कह रहा है, चलो दोस्तों कल मैं बताऊंगा ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जाने का वक्त हुआ। दोस्तों आप सभी ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, प्लीज कीप इट अप। और जाते जाते फिर पूछ लेता हूँ आपसे, हर लम्हा किसी खास शख्स की याद दिल में बसी रहती है, दूर होकर भी वो हर पल करीब महसूस होता है। एक वर्ड है उसमें जो आपको पता चल देना चलना चाहिए कौन सा गीत है, ठीक है। चलो चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द डे, कीप वार्म, और अगर आप हॉट कंट्री में तो कीप कूल। जी हाँ, कल मिलूंगा, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सुबह के ताजा तरीन सफर में कुछ मोटिवेशनल बातों और प्यार भरे गीतों का साथ लेकर आ गई है आपकी अपनी हम सफर सताक्षी। जी हाँ, रेडियो प्रसवानी पर एक बार फिर से आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ पूरे 2 घंटे आपका अपना इट हैपेंस। दोस्तों, सुबह की ताजगी में अगर अपनों का प्यार घुल जाए तो उस सुबह की ताजगी और भी निखर उठती है, और आज भी ऐसा ही साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, क्योंकि बातें बहुत ही खास हैं, लेकिन उससे भी खास हैं आज के गाने, तो इन गानों के साथ हम प्यार भरी बातों का ये सफर यूं ही जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। के प्लसिंग टू रेडियो प्रसवानी, सताक्षी आपको एक बार फिर से कहती है गुड मॉर्निंग।

मॉर्निंग रेडियो प्रसवानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वैसे इसके पहले कि हम सफर में आगे बढ़ें, हम रोज की तरह आज भी अपनी रीत निभाना नहीं भूलेंगे। जी हाँ, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है, अपना जन्मदिन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई हमारा जो बर्थडे होता है ना, वो हमें ये याद दिलाता है कि हम खुद के लिए कितने स्पेशल और खास हैं, राइट? तो आज आप भी अपने खास होने को सेलिब्रेट कीजिए, इस अपनेपन को सेलिब्रेट कीजिए जो आपके अपने आपको मैसेजेस, विशेस और कॉल्स के जरिए देने वाले हैं। एंजॉय कीजिए आज के दिन को। और जिनका आज है एक दूसरे के साथ बंधने का दिन, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी है जिनकी आज, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर यूं ही जिंदगी की राहों पर चलते रहिए। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, यानी आज कुछ खास होने वाला है या आज वो कुछ खास करने वाले हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के दिन से कुछ, उन्हें उन सबको ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रसवानी, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपके साथ है सताक्षी। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। पैसा, पैसा जब हमारे पास होता है तो हम अक्सर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं ना पैसे को लेकर। यहाँ खर्च करेंगे, ये शॉपिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखिए, पैसे को लेकर अगर आपकी बहुत सारी नीड्स हैं और वो जेन्युइन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हैं तो आज आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, कल पैसा आपको खर्च करेगा। याद रखिए कि पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा आ जाए या जरूरत से ज्यादा आप खर्च करने लगे तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए पैसे की वैल्यू को समझिए, जरूरत से ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए और पैसे को बहुत संभाल कर रखिए। और बहुत सारी जरूरतें जो आज पूरी हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो कल भी उसी तरह पूरी हो पाए। आइए एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, आपके साथ है सदाक्षी। अक्सर कहते हैं कि ड्रिंक करना सेहत के लिए बुरा होता है ना। मैं भी ये कहती हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मतलब आप कहाँ ही पहुंच जाते हैं, सुबह का वक्त है। लेकिन एक जो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपको किसी इंसान को समझना है, उसके दिल में क्या है, उसकी जबान पर क्या रहता है और किस तरह से वो आपके लिए सोच रखता है या क्या वो आपसे चाहता है, अगर जेन्युइनली आपको उसके बारे में जानना है, तो जब वो नशे में है ना, तब आप उससे बात कीजिए। वो किसी ने गलत नहीं कहा है कि नशे में इंसान सच बोलता है, और किसी भी इंसान का कैरेक्टर जो है वो तभी सामने आता है जब वो नशे में होता है। और मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर और उसकी असलियत दोनों तब सामने आते हैं जब वो है ना, हाँ, नशे में होता है और आपसे बात करता है। तो ये मत सोचिए कि अगर अगला इंसान नशे में है तो आपको उससे बात नहीं करनी है। भाई थोड़ा सा कुरेदिए, आपको पता चलेगा कि उसका आपको लेकर के लेवल क्या है। आइए एक और ट्रैक प्लान मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: में ये वो टाइम होता है जहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हम एंजॉय करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के वो तीन बैक टू बैक ट्रैक्स जो बने हैं गानों की हैट्रिक का हिस्सा। और अभी ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

गानों की हैट्रिक रितु प्रसानी 170 वॉल्यूम पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। गानों की हैट्रिक इस लास्ट ट्रैक को एंजॉय कीजिए, इसके बाद इट हैपेंस में होंगी आपके साथ ढेर सारी बातें। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसानी, आपके साथ है सताक्ष।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इटहैपेंस। आपके ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम अभी तो बुरा कर रहे हैं ना, अभी मतलब अभी बुरा करके हमें शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, ये हमारा फायदा हो रहा है, कब कर्म हमारा हिसाब करेगा देखा जाएगा। तो देखिए आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज आपको खुशी मिल रही है, आज आपकी जरूरत पूरी हो रही है और कल कर्म जो करेगा वो देखा जाएगा। भाई देखिए कर्म तुरंत आपको सबक नहीं देता है, वो चुपचाप इंतजार करता है और उस दिन आप पर वार करता है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपके लिए वफादार हो। बुरे कर्मों का जो जहर है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे चढ़ता है और असर तब दिखाता है जब इलाज का वक्त निकल चुका होता है। जब आप सबसे ज्यादा बेफिक्र हो जाएंगे ना, ठीक उसी पल वो आपका हिसाब करेगा। और इसलिए ये मत सोचिए कि जब हिसाब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो ये मान के चलती हूँ भाई कि स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं, हिसाब इसी दुनिया में होता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, कुछ बातें जिंदगी की, कुछ कर्मास की और कुछ आपके अपनों की। के प्लस निक टू रेडियो ब्रिस्वानी।

0: रेडियो प्रेस वाणी पर सदाशी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कुछ बहुत ही गहरी और प्यारी बातें। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, क्योंकि ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें पूरे दिन का हिस्सा बन जाती हैं। ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें आपकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं। ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें आपको दिन भर मोटिवेट रखती हैं और आपको याद रहता है कि आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वो ड्रीम है जिसे आपने पूरा करने की कसम खाई है। वो इंसान आपकी जिंदगी में हो ना हो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन मैं हूं ना और मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको जिंदगी में आगे ले जा सकूं और वो जो एक पुश चाहिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो दे सकूं। और कहीं भी जिंदगी में अगर आपको ये लगे कि आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो वो मैं बहुत देर तक आपको फील ना होने दूं, एटलीस्ट जब आप इट हैपेंस में हैं तो मेरी यही कोशिश है। तो चलिए अपनी इस कोशिश को थोड़ी सी और हवा देते हैं और इस अगले ट्रैक के साथ आगे लेकर चलते हैं आपको। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और बने रहिए आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।
1: Take it away!